0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सो आसमान अरमान मलिक 6:10 इट्स द 30th ऑफ जून ट्यूसडे की सुबह. देयर सो मच हैपनिंग इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: सर बताइए, वही वन ऑफ दोस पीपल जो कि न्यूज़पेपर उल्टी दिशा से खोलते थे, लाइक द स्पोर्ट्स पेज फर्स्ट, इफ यू आर दोस काइंड ऑफ पीपल. या आई एम फर्मली इन दैट कैटेगरी. एंड पहली नजर मेरी स्पोर्ट्स पर ही जाती है. व्हाट हैपेंड ओवर द पास्ट 24-36 आवर्स, ये तो आपको पता ही है. बेन स्टोक्स अनाउंस्ड हिज इंटरनेशनल रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. नॉट जस्ट स्टेप डाउन एज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, बट ऑल्सो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है बेन स्टोक्स ने. बट नाउ व्हाट विल हैपन टू हिज पार्टनर इन क्राइम एंड राइम एंड एवरीथिंग, ब्रेंडन मैकलम. पीपल आर सेइंग कि भाई अब बैस बॉल को भी खत्म, बट प्लीज बहुत हो गया. सो ब्रेंडन मैकलम he's not quit, he's still sticking around till the end of his tenure. He's saying कि मेरा कोई कमिटमेंट में कोई कमी हो तो बताइए, मैं क्यों, why should I go just because Ben Stokes decided to call it quits. But हुआ क्या exactly, lots of mystery around that. So yeah, that's one story that's going to come out details. But cricket के छोड़िए, football पे ध्यान दीजिए, because it is just the most popular sport in the whole world and World Cup चल रहा है. And why is it the most popular sport in the whole world? Because on any day, any team can beat any other team, no matter if it's Germany. Paraguay beat Germany last night while we were sleeping in a penalty shootout. 1-1 full-time pe score tha. And because it's a knockout round of 32, it went to penalties. And then despite the fact that they had one of the most storied goalkeepers in the history of football, Manuel Neuer came out. Kaise pronounce karte hain? Neuer to definitely nahi. But yeah, Manuel, let's just call him Neuer. We are desis, man. Manuel Neuer came out of retirement, but still Germany lost the penalty shootout to Paraguay. Wow. Round 16 mein pahunchne bahut saalon ke baad Paraguay, in this century they've never done that, right? So now it's Brazil who've also moved into the round of 16. There's Paraguay, and aaj jo match chal raha hai, it is Morocco versus Netherlands, and Morocco is giving a tough time to Netherlands, one of the favorites of the tournament. It is still 0-0 after 51 minutes. This is the Big Breakfast with me, Sid, coming up in just a while. A bit of Dhurandhar to kickstart your day. Keep it out to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2.

0: 5,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी।

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 6:47 on the clock, and this is Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: And सबसे बड़ी सबसे amazing चीज about this day, I mean forget about everything else that's happening, 30th of June, आज सबसे पहली एतिहाद रेल की ट्रेन निकल चुकी है फुजैरा से, अब बस अबू धाबी पहुंचने ही वाली होगी in a few minutes. I've got Iftikhar with me on the phone line. Good morning, how are you doing? तो मतलब आज से कुछ 5-10 साल बाद जब क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा होगा, एंड द क्वेश्चन विल बी के बताइए कौन से दिन एतिहाद रेल सबसे पहले निकली थी फुजैरा से, एंड द करेक्ट आंसर इज
2: 30 जून 2023.
0: कैसा लग रहा है आपको, आप कौन से एमिरेट में रहते हैं इफ्तिकार जी?
2: मैं बेसिकली दो एमिरेट्स में रहता हूँ एट द सेम टाइम.
0: हैं?
2: यस.
0: लेट मी गेस, आप अलनादा में?
2: ओ
0: दुबई. ये कैसे, बीच में शारजा भी तो आता है?
2: हाँ, लेकिन मैं दोनों में रहता हूँ, वो शारजा को खाली क्रॉस करता हूँ आते जाते.
0: अच्छा, तो मतलब अप डाउन करते हैं आप, अप डाउन. सो मतलब देयर इज समबडी हु इज सेलिब्रेटिंग एतिहाद रेल, इट इज इफ्तिकार भाई, मतलब जल्दी लाओ. कितने टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं एतिहाद रेल का बताइए?
2: बहुत टाइम से रियल में. मेरा असल में ना देखिए, मैं बहुत ट्रैवलर हूँ. हाँ. मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, और हाँ. सबसे मेरा जो पसंदीदा मोड ऑफ ट्रैवल है वो ट्रेन है.
0: आई कांट अग्री विद यू मोर यार, मतलब किसी कंट्री में जाने का, उस कंट्री का जो एक एसेंस है ना, उसका अगर आपको मजा लेना है तो ट्रेन में डेफिनेटली ट्रैवल करना है, करेक्ट?
2: एग्जैक्टली. और दूसरा असल में ना बचपन की बड़ी यादें हैं ट्रेन के साथ. हमारे यहाँ वो पुराने दौर में इंजन चलता था जो कोले से चलता था.
0: लिटरल छुक छुक गाड़ी.
2: और हमारे उधर क्या है ना, छोटे छोटे गांव आते हैं तो लोग रास्ते में मतलब जो भी है ना उस गांव का या उस एरिया का वो फ्रूट लेके आ जाते थे, फ्रेश फ्रूट.
0: सो आई एम अज्यूमिंग आप कहाँ से हैं? आर यू फ्रॉम पाकिस्तान?
2: पाकिस्तान.
0: तो मतलब यार दिस इज वेरी कॉमन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो, कि हर एक जो स्टेशन होता है वहाँ का एक खाना फेमस होता है. सो कहीं कहीं के छोटे समोसे फेमस होते हैं, कहीं के चीज पैटी फेमस होती है, कहीं के कुछ
2: दही भल्ले, करेक्ट, समोसा चाट.
0: हाँ, कहीं जैसे आपने कहा कहीं के फ्रूट फेमस होते हैं, कहीं के आम, कहीं के अमरूद,
2: कहीं के टिक्के.
0: वाओ वाओ. सो मतलब वो स्टेशन पे आप रुके और आपने वहाँ के अमरूद नहीं खाए तो फिर क्या किया आपने यार, फिर पूरी ट्रेन जर्नी.
2: क्या बात है. और बड़ी सबसे यानी दो चीजें ना यकीन करें, एक तो ये होता है कि वहाँ पे बिल्कुल वो फ्रेश फ्रूट होता है, वो प्लक करते हैं ट्री से और लेके आते हैं, मतलब
0: कागज में लपेट के.
2: हाँ, दूसरा ये है कि वो बहुत सस्ते होते हैं, यानी मार्केट के हिसाब से भी वो आपको वैसे ही दे देते हैं इतने सस्ते दाम.
0: बिल्कुल कर दी ना देसियों वाली बात, मुझे पता था एंड में ये. तो चलो एक काम करते हैं कि ये ऑफ कोर्स ट्रेन जब एतिहाद रेल के सारे जो स्टेशन कनेक्ट हो जाएंगे, सारे एमिरेट कनेक्ट हो जाएंगे, तो लेट्स नेम कि अगर वो जब शारजा में रुकेगी तो वहाँ का क्या खाना फेमस होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए स्टेशन पे अगर वो देसी ट्रेन होती तो
2: शारजा के अंदर.
0: हाँ,
2: मुझे तो वाला टिक्के बहुत पसंद है, मुझे तो टिक्के चाहिए.
0: चलो शारजा के टिक्के हो गए, उसके बाद अगर अजमान में जब रुकेगी तो वहाँ क्या मिलना चाहिए?
2: अजमान में बिरयानी मिलनी चाहिए.
0: अजमान की बिरयानी. अबू धाबी में क्या मिलना चाहिए?
2: अबू धाबी में समोसा चाट.
0: अबू धाबी का समोसा चाट मैंने कभी नहीं खाया यार, ये डेफिनेटली ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम. व्हाट अबाउट फुजैरा?
2: क्या होता है ना, चने होते हैं, समोसा होता है,
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट,
2: सैलेड होती है और
0: थोड़ी सी हल्की सी दही और लाल चटनी. वाह,
2: क्या बात है, पूरी फुल प्लेट.
0: बहुत ही बढ़िया यार. सो ये सारी जो आपकी जो सिफारिशें हैं, जो सजेशंस हैं, वी विल मेक श्योर दैट द अथॉरिटीज गेट इट एंड लेट्स सी इफ दे आर एबल टू गेट. बट बताइए कौन सा वो गाना आपको याद आ रहा है आज?
2: व्हेन आई से असल में ना, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूँ रियल में, क्योंकि आप लोग सऊदीया जाते रहते हैं ना, तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं दुबई से सऊदीया जाऊँ मक्का वाया ट्रेन.
0: Wow, wow. ये तो इंशाल्लाह this is gonna happen very very soon.
2: ये बहुत ही जल्द होगा रियल में वो जिंदगी की, मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशी होगी हमारे लिए.
0: Definitely, definitely. I mean that is, I think so, it's all heading in that direction. मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है बहुत जल्द.
2: बिल्कुल, बहुत मजेदार सफर होगा ट्रेन में. एक फैमिली का सफर होता है, मतलब अननोन लोग होते हैं, लेकिन आप फील लाइक अ फैमिली, नॉट इन एनी अदर मोड ऑफ ट्रैवल बट
0: एग्जैक्टली एग्जैक्ट. क्योंकि वो जो बड़े वाले टिफिन बॉक्स जब खुलते हैं तो फिर कोई अकेले नहीं खाता, वो पूरा का पूरा डिब्बा साथ मिलकर उसको बांटता है.
2: तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की कहानियां, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है.
0: एब्सोल्युटली. कभी कोई कोई यू नो अपना इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई ऑडिशन देने के लिए जा रहा है,
2: किसी का बच्चा हुआ है उसको खुशी है, कोई जॉब पे जा रहा है.
0: एब्सोल्युटली. आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मतलब ट्रेन के अंदर हम लोग वापस चल, वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, आई फील लाइक दैट.
2: ट्रेन में अभी फुजैरा से अबू धाबी जा रहा है.
0: बढ़िया, चलिए फिर ये गाना भी हो जाए। कौन सा वो गाना है जो
2: गाना
0: आपको याद है?
2: असल में मैं गाना सुनना चाह रहा हूँ, जो हमारे यहाँ गांव में जब शादियाँ होती है ना, तो जब शादी के जो मेहमान आए होते हैं ना सारे, तो वो सुबह सुबह ना नाश्ता जो होता है ना, वो होता है जलेबी।
0: हाँ वो, और दूध, दूध जलेबी।
2: हाँ दूध जलेबी, तो अफगान जलेबी।
0: ओए होए होए, क्या बात है, अफगान जलेबी। मुझे लगा कोई ट्रेन का गाना आप चूज करोगे, लेकिन आपने तो मतलब
2: ये बड़ा एंथुसियास्टिक गाना है। इसमें मतलब ये है कि बहुत इमोशनली पावरफुल गाना है ये, यकीन करें।
0: आई कंप्लीटली एग्री विद यू यार, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, अफगान जलेबी। मतलब जब भी कोई सुनो, चाहे क्रिकेट फील्ड में बजे, तब चाहे आप कहीं पे भी सुनो, आपका मूड अच्छा ही हो जाएगा यार। सो चलिए इफ्तिखार, आपसे मजा आ गया बात करके, एंड थैंक यू सो मच, एंड हम सबको मुबारक हो इतिहाद रेल की पहली ट्रेन।
2: सबको मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा
0: है, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग एंड मेकिंग माई डे। एंड दिस इज अफगान जलेबी, डेडिकेटेड फ्रॉम इफ्तिखार and all of us to Itihad Rail that kicks off today. What a historic 30th of June 2026 this is. So just about 7 to 8 minutes to go. In case you're feeling as happy as Iftikhar and I are on this historic day, give me a call, let me know your emotions. 800-1062 is the number. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: I think, and all the football fans, tell me if you agree with me, what's happening is completely insane.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Now, I'm not a huge football fan. But aisa nahi hai ki jab World Cup khatam ho jayega, then I'll go back to watching, you know, all the Premier Leagues around the world. Nahi, aisa nahi hai. But I watch each and every World Cup. Mujhe lagta hai, and again, correct me if I'm wrong, कि इस वर्ल्ड कप में जितने गोल स्कोर हुए ना, इट इज टोटली अनकैनी. हार्डली आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल गेम जिसमें गोल स्कोर नहीं हुआ. एंड ऑल द प्रीवियस वर्ल्ड कप एडिशंस, यू नो, दिस 0-0 ड्रॉज एंड ऑल, दे वर लाइक, इट्स वेरी वेरी कॉमन थिंग. बट पिक्चर दिस, नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को का राउंड 32 का गेम चल रहा था. 72nd मिनट में नेदरलैंड्स स्कोर्ड. दे आर द फेवरेट्स इन दिस गेम, ऑफकोर्स बाय रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री, इफ यू लुक एट दैट. बट एक्स्ट्रा टाइम के एक मिनट के बाद मोरक्को स्कोर. लुक एट द कॉन्फिडेंस, लुक एट द प्रिसिशन. एक और चीज है यार, लॉन्ग डिस्टेंस गोल्स जितने इस बार मारे गए ना, जितने मैंने देखे हैं, वो किसी और वर्ल्ड कप में नहीं देखे. 100 इसमें तो मैं आई एम नॉट इवन डिस्प्यूटिंग द फैक्ट, दिस इज बीन लाइक वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल वर्ल्ड कप्स. अभी भी चल रहा है 1-1. इट इज इवन स्टीवंस एट द वर्ल्ड कप, नेदरलैंड्स वर्सेज मोरक्को. इट्स हेडिंग फॉर वन मोर पेनल्टी शूट आउट. यार बताइए, आपकी स्लीप साइकिल कैसी चल रही है? सही चल रही है या हो गई बर्बाद?
2: होना जाए प्यार.
0: If you're a football fan, definitely बर्बाद हो गई होगी.
2: बेहद बेशुमार.
0: Speaking of it, this song is coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: मिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लो।
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: जहाँ से गुजरते हैं फ्रॉम धुरंधर और बस अब अक्षय खन्ना को धुरंधर में सक्सेस मिल गई तो हर एक फिल्म में रहमान डकैत वाली एंट्री मारेंगे वो।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: नहीं, I'm not just saying that. एक एग्जांपल मिला कुछ घंटों पहले जब ऑफिशियल ट्रेलर बाहर आया ऑफ दिस मोस्ट अवेटेड फिल्म कॉल्ड इक्का, ऑफिशियल नेटफ्लिक्स रिलीज ये है, इट्स कमिंग आउट ऑन द 10th ऑफ जुलाई। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज डाई के लोग हाथ सनी देओल इज गोइंग टू बी प्लेइंग अ लॉयर वंस अगेन। बट आई थॉट एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल्सो थॉट कि अक्षय खन्ना एंड सनी देओल आर गोइंग टू बी अगेंस्ट ईच अदर फाइटिंग अ कोर्ट केस, एक प्रोसिक्यूशन और एक डिफेंस का लॉयर। ऐसा नहीं है, अक्षय खन्ना इज द क्लाइंट ऑफ सनी देओल इन दिस फिल्म एंड सनी देओल इज प्लेइंग इक्का द लॉयर हुज नेवर लॉस्ट अ सिंगल केस। चलो साथ मिलकर सुनते हैं ये ट्रेलर।
2: आप कोर्ट को बताएंगे कि उस रात क्या हुआ?
3: शान कुछ चाहता है, होता कुछ और है।
4: मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है।
5: प्लीज वेलकम द अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी, मिस्टर अर्जुन मेहरा।
6: हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं।
3: तो मुझे डिफेंड कर केस जीत हीरो बन, लाइफ के बदले लाइफ, डील?
4: सुनने में आया है कि मशहूर वकील अर्जुन मेहरा, जो हमेशा मासूमों के पक्ष में लड़ते हैं, वो डिफेंस लॉयर बनेंगे। प्रोसिक्यूशन से लड़ने वाली मधुरा बैनर्जी या शोभा के केस को हैंडल कर पाएंगी?
7: अर्जुन मेहरा ये केस क्यों ले रहे हैं?
0: अर्जुन मेहरा ये केस क्यों ले रहे हैं? दैट इज द होल पॉइंट। आई थिंक कुछ मॉरल डिलेमा की बात इसमें होने वाली है। माय फेवरेट कमेंट सो फार वाज तारा सिंह एंड रहमान डकैत इन अ पैरेलल यूनिवर्स। दैट इज एब्सोल्युटली फैबुलस यार, अमेजिंग कमेंट है वो। एंड देन या बिकॉज आई मीन 90s वाले

देओल इज ही गोना एज वेल दैट्स द थिंग बिकॉज उनका परफॉर्मेंस इज हैज यू नो लॉट्स ऑफ शेड्स ऑफ घायल एंड ऑल ऑफ दोज फिल्म बट अक्षय खन्ना ने मूछों में डायलॉग बोलने की जो कला है उसको आई थिंक ही इज लाइक द स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ अजय देवगन बट लेट्स सी 10th of July इज वेन इक्का रिलीज इज वन अमेजिंग थिंग अबाउट दिस ट्रेलर इज कि जब क्रेडिट्स की बात आती है धर्मेंद्र इज नहीं Sunny Deol is credited not as Sunny Deol, but as Dharmendra's son, Sunny Deol.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: मैं बट आज की हुई इतनी गर्मी में क्या करना है मेरे क्यूटी पाइज? ऑफ कोर्स टॉप आंसर विल बी स्टेकेशन पे जाना है.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almyrid Ras Al Khaimah.
0: Part lo in Bollywood Vacay aur jeet jao ek amazing sa staycay. Wow, wow, there's so much poetry in this.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: It's, I think, the seventh time that we're doing this, right? पिछले कुछ डेढ़ हफ्ते से हम लोग ये कर रहे हैं, तो you know what you got to do, take part in the big summer surprises. The WhatsApp format is the same. BSS, space your name, send it to 054-309-1062. That's our WhatsApp number. Save कीजिए 054-309-1062 पर BSS for big summer surprises. Space your name. जब आप भेजेंगे, WhatsApp करेंगे, करते रहेंगे, then two of you are going to be playing the Bollywood Vacay contest with me. इसमें होगा ये कि मैं आपको एक गाने का हुक सुनाने वाला हूँ and उस पर से एक सवाल पूछूंगा, right? एक नहीं, एक्चुअली तीन सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ. इट्स गोना बी अ बेस्ट ऑफ थ्री, बट द क्वेश्चंस विल बी समथिंग टू डू विद बॉलीवुड प्लस वेकेशन. सो इट्स गोना बी अ सॉन्ग दैट हैज बीन शॉट एट अ ब्यूटिफुल लोकेशन. इट कुड बी इंटरनेशनल लोकेशन, कुड बी लाइक सम प्लेस इन इंडिया विच इज लाइक अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सो वेकेशन प्लस बॉलीवुड, इफ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू एस दिस कॉन्टेस्ट, परफॉर्म बेटर दैन द पर्सन प्लेइंग अगेंस्ट यू इन कॉन्फ्रेंस ऑन द फोन लाइन, देन कीप व्हाट्सएपिंग. मौका हाथ से छूटे ना. 054-309-1062. That is the WhatsApp number. 054-309-1062. Sirf BSS space apna naam aapko WhatsApp karte rehna hai. And then what do you stand to win? An amazing staycation at the Rixos Almyrid in Ras Al Khaimah. Plus on the spot, if you win today, right here, right now, you stand to win two Vox tickets and saath mein an F&B voucher as well. Arijit Singh with Beech Beech mein coming up in right here on Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी। Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ।
2: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money Money यूज करो।
1: क्या सैलरी के लिए?
2: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ।
1: जैसे क्या?
2: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से।
1: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है।
2: बिल्कुल, E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है, इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है। तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: वाओ, योर हेयर कलर लुक्स स्टनिंग।
4: थैंक्स, आई डिड इट मायसेल्फ दिस मॉर्निंग इन 5 मिनट्स।
3: या राइट,
4: नो, इट्स हिना स्पीडी इजी हेयर कलर दैट्स मेड इन इटली। इट्स अमोनिया फ्री एंड एनरिच्ड विद हिना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल।
3: रियली?
4: या, एंड विद द इजी कॉम्ब एप्लीकेटर इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स।
3: आई एम बाइंग इट राइट नाउ।
4: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
0: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: इट्स दैट क्लासिक कॉम्बिनेशन, गर्मी साथ में ह्यूमिडिटी भी। इट्स 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, वेरी ह्यूमिड, 66% ह्यूमिडिटी, विंड्स ब्लोइंग एट 14 किलोमीटर पर आवर। इट्स अ सनी स्टार्ट टू दिस ट्यूजडे मॉर्निंग, हाईज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस।
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: हाँ बीच बीच बीच में बीच में ऐसी चीजें आती रहती हैं यूट्यूब पर दैट यू यू नो दे गेट टेम्प्टेड टू बिलीव आर रियल बट एक्चुअली दे आर एआई.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: मजाक निकल आपने भी नोट किया होगा कि यू गॉट बी वेरी केयरफुल ओनली ट्रस्ट ऑन ऑफिशियल चैनल्स क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल आवारापन 2 का ऑफिशियल टीजर हैज रिलीज्ड. अब देखना पड़ता है कि यार ये मतलब ये चैनल कौन सा है. ऑफिशियल चैनल है तभी मैं विश्वास करूंगा क्योंकि टीजर के रिलीज होने से कुछ एक दो हफ्ते पहले ही बहुत सारे लोग अपना एआई वर्जन लगाकर उसको चिपका देते हैं ऑन यूट्यूब. गानों के साथ भी हो रहा है या सो नाउ दैट द टीजर इज आउट एक्सपेक्ट आई एम टेलिंग यू इन द नेक्स्ट 2 to 3 days और मे बी इवन द नेक्स्ट 12 hours कोई ना कोई आवारापन 2 का गाना बनाकर एआई की मदद से एंड ही विल मेक अ नाइस लिटिल म्यूजिक वीडियो ऑल्सो अगेन एआई की मदद से एंड पुट इट अप ऑन यूट्यूब एंड देन इट विल कंफ्यूज you know people like especially like me who are radio presenters very very careful but yeah Awarapan 2 ka official teaser is out. Imran Hashmi ka ek alag hi like fan base hai, right? I mean itna ki Bads of Bollywood mein bhi Aryan Khan ne unko ek acting coach ka role hi de diya tha yaar. It was like and he's amazing yeah. I mean, he looks like the kind of person that you like to make friends in real life also, can't take a joke and all of that. So Imran Hashmi in Awarapan 2, chaliye saath milkar teaser sunte hain.
2: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती. उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है.

0: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
1: ये इट्स गॉट क्लासिक सॉन्ग्स, मतलब कल्ट क्लासिक फिल्म तो है ही आवारापन वन। जब रिलीज होती है तो यू कांट रियलाइज कि कौन सी फिल्म जाकर आगे कल्ट बन जाएगी। बट व्हाट इज वन थिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस फिल्म, दैट शबाना आजमी इज एक्चुअली प्लेइंग द मेन एंटेगनिस्ट। शी इज इन अ नेगेटिव रोल। एंड कॉल आउट टू ऑल द बॉलीवुड फैंस आउट देयर, क्या आपको याद है कि पिछली बार आई थिंक 2002 व्हेन शबाना आजमी प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर द लास्ट टाइम एंड वी रियली रियली लव्ड इट। वॉज अ चिल्ड्रंस फिल्म। इफ यू नो द आंसर गिव मी अ कॉल 800-1062 पर। कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज, मैं और तू कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। गुड मॉर्निंग।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE. Part of Elite Group Holding. TNCs apply.
4: A circuit. अपने कार के एसी की वाट लग गई। एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा? बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई। अलरास है ना?
4: अलरास बोले तो?
5: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन। हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। Visit Al Ras, Middle East ka number one auto AC spare parts dealer.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
8: InsurersMarket.ae. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
9: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: All right, 8:27 on the clock, and there is a 17-minute slowdown on E44. So, yep, it's one of those Tuesday mornings. All the way from Russell Core Wildlife Sanctuary, going through D3 Business Space, lekar aapko Alkuz Industrial tak traffic milega. In fact, even beyond Alkuz 4th, you'll get Alkuz Industrial 2nd tak slow-moving traffic aapko milne wala hai. And iske baad bhi, there's a 2 to 3 minute delay going towards Dubai Hills Mall. So entire stretch of E44 is quite congested heading south. Then on E44 heading north, Al Bashra South, par aapko traffic milne wala hai. Al Bashra South heading north going towards Dubai Hills Mall, also a couple of incidences being reported. Aaj wo din hai when agar if it's possible, then avoid E44. In case you spot something unusual on the roads, give me a call. The number is 800-1062.
9: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
10: Are you going to
11: get it? Yeah.
12: Cut it, yeah.

0: वाओ, मैंने तो बस एम ही सवाल पूछ लिया था, बट आई गॉट लॉट्स ऑफ पीपल कॉलिंग इन.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: चलो फिर दो तीर एक निशान, लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू द बिग बॉलीवुड क्विज. नाउ द क्वेश्चन वाज कि शबाना आजमी ने पिछली बार नेगेटिव रोल कौन सी फिल्म में किया था, बिकॉज व्हाट इज द ट्रिगर. अवारापन 2 का ऑफिशियल टीजर इज आउट. इमरान हाशमी, डार्क ट्विस्टेड स्टोरी लाइन लग रही है, बट द डार्केस्ट कैरेक्टर इन दिस इज शबाना आजमी. शी इज गोइंग टू प्ले द प्राइमरी एंटागनिस्ट ऑफ नफीसा, एंड उनका एक जो स्वरूप है, उनका जो एक यू नो द लुक इज स्ट्रेट आउटसाइड लाइक अ साईफाई मूवी. शी इज इट्स अ लुक दैट शी इज नेवर हैड बिफोर. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीइंग शबाना आजमी इन अ नेगेटिव रोल, बिकॉज द लास्ट टाइम शी डिड अ नेगेटिव रोल वॉज इन 2002, एंड द बिग कहानी में ट्विस्ट, ये एक बच्चों की फिल्म थी मेड बाय भारद्वाज, जिसमें ऐसे गाने थे. Big Bollywood quiz made to win two open movie tickets. Give me a call right now. 800-1062. Tell me the name of the film jisme last time in 2002 Shabana Azmi played a negative character, the main antagonist. 800-1062 par call kijiye.
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: What is he saying? Pasa, paisa, paisa? Yeah, Marathi mein basa, basa. Sit down, everybody. Yeah, Dhamal Force, that is Sari right here on Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: On the phone line, mere saath hain Firoz. Ye log ghode ki chabiyan. Firoz, kya hal chaal hai?
2: I'm good. Good morning, Sid. How are you?
0: Very good. Kya lag raha hai aapko? Kya bolte hain? Any connection to Mumbai? Where are you from, Firoz?
2: I'm from Indore.
0: You're from Indore. मुझे लगा कुछ मराठी ठेका इस गाने के अंदर है, मतलब पैसा पैसा, पहले मुझे लगा पैसा पैसा बोल रहे, then I was like भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या बोल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा यार,
2: पैसा
0: पैसा यार। फिरोज से मैंने ऑलरेडी पूछ लिया कि वो क्या काम करते हैं, फिरोज इज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, इसलिए फिरोज के लिए गाने में पैसा पैसा पैसा पैसा। तो कितना पैसा छापने का इरादा आज फिरोज है? क्या होता है, व्हाट इज इट इन सेल्स एंड मार्केटिंग में आप हैं, सेल्स के बंदे के लिए क्या आपका मूड आपके यू नो टारगेट के हिसाब से होता है, दिन में शाम, एवरी डे इज लाइक इज इट अ डिफरेंट एवरी डे?
2: या डिफरेंट स्टोरी एवरी डे, बिकॉज़ सम टाइम डिपेंड करता है कस्टमर से ऑर्डर देते हैं नहीं देते हैं।
0: तो जब देते हैं वर्सेस नहीं देते हैं, आपके मूड में क्या होता है, क्या आपके क्या हरकत करते हो जब ऑर्डर मिलता है वर्सेस नहीं मिलता है?
2: नहीं मिलता है तो फिर ओके नेक्स्ट टाइम दे देंगे, फिर बोलते ओके ठीक है, कॉल करेंगे, आपको अभी जरूरत नहीं है।
0: नहीं कुछ होगा ना कि एक स्पेशल दुकान की स्पेशल चाय आप पीते हैं जब आपको ऑर्डर मिल जाता है, और जब नहीं मिलता है तो आप उसको अवॉइड करते हैं, ऐसे कुछ कोई आदत नहीं है आपकी?
2: नहीं,
0: तो चलो यार, फिल्में देखने का आदत तो आपको डेफिनेटली है, बिकॉज यू गिव मी द करेक्ट आंसर, यू द फर्स्ट पर्सन एक्चुअली टू गिव मी द करेक्ट आंसर। मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि शबाना आजमी हु इज गोना प्ले द नेगेटिव कैरेक्टर इन आवारापन 2, उन्होंने पिछली बार नेगेटिव रोल कौन सी फिल्म में किया था? विशाल भारद्वाज की ये फिल्म थी, बच्चों की फिल्म थी, एंड उसमें ये वाला गाना था। कॉन्ग्रेचुलेशन फिरोज, आपने जीते दो ओपन मूवी टिकट, यू कैन गो एंड एंजॉय द मूवी ऑफ योर चॉइस, चाहे आपको वो मिले कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यार, उससे माइंड फ्रेश हो जाता है। सो कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन द कॉन्टेस्ट,
2: टेक केयर, दैट
0: इज फिरोज। एंड यस, मकड़ी के बाद नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शबाना आजमी, यू हैव वन थिंग दैट यू डू व्हेन यू गेट टू वर्क इज जस्ट वॉच आवारापन 2 का टीजर, तो आप डेफिनेटली देखेंगे, कुछ आई थिंक 20 आवर्स अगो द टीजर वाज रिलीज्ड, बट यू हैव टू लाइक take note of Shabana Azmi, she is looking like she's never looked before. Well, this is The Big Breakfast with me, Sid, right here on Big 106.2, part of the Funny Share Network. Good morning.

0: participate in the Bollywood VK contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Al Mayrid Ras Al Khaimah.
1: Yes, we're all set to play Bollywood VK contest, part of the big summer surprises. Zaban meri ladkhada rahi hai because prize itna bada hai yaar. I mean, everybody wants to go for a staycation, right? And Rixos Al Mayrid Ras Al Khaimah mein jaane ka mauka. Let's say good morning to Razmia. Hello.
2: Hello, good morning.
1: अरे यार कितने थके हुए लग रहे हो यार, कितनी मेहनत करते हो आप, क्या हो क्या, what is the problem Razmia?
2: Nothing, I was just dropping my kids to school. मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक
1: हूँ. Is it one of those mornings, did they like तूफान मचा दिया घर पे उन्होंने बच्चों ने, क्या सीन है?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. I'm little sick also, I think that's why.
1: अच्छा चलो ठीक है यार, okay I'll take your word for it. I got Pritesh also with me. Pritesh bhai, good morning.
3: Good morning. How are you guys?
1: आप तो ऐसा लग रहा है कि ऑफिस टेबल के नीचे घुस के बात कर रहे हो. पहुंच गए?
3: पहुंच गया ना.
1: पंचिन हो गया? पंचिन
3: हाँ पूरा हो गया.
1: चलो सही है. सो क्या काम करते हो आप प्रीतेश?
3: I'm in finance, working as a senior accountant.
1: ओहो, सीनियर बोलना जरूरी था?
3: पूछा था तो इसलिए बोला था.
1: इससे प्रेशर बताया, ऐसे मत बोला करो, जब जीत जाओ उसके बाद बोलो सीनियर एंड ऑल दैट, यू नो, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट व्हाटएवर. बट चलो, इट्स गोना बी प्रीतेश वर्सेस रजमिया. नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. ओके, व्हाट्स गोना हैपन इन दिस कॉन्टेस्ट इज, मैं आपको तीन सवाल पूछूंगा. ओके एटलीस्ट तीन, टू डू विद बॉलीवुड प्लस वेकेशन. कुछ ऐसे गाने मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ ऐसे सीन डिस्क्राइब करूंगा जिसमें बॉलीवुड भी हो और वेकेशन भी हो. इट्स शॉट एट अ ब्यूटीफुल लोकेशन. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन कुड बी अबाउट द स्टार कास्ट, अबाउट द लोकेशन एटसेट्रा. अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है तो आपको अपना नाम बजर की तरह यूज करना है. ओके, सो यू गॉट अ शाउट बिग रजमिया और बिग प्रीतेश. वंस मैंने वेरीफाई कर लिया कि किसने अपना नाम पहले चिल्लाया है, उनको जवाब देने का मौका मिलेगा एंड देन यू गिव मी द आंसर राइट और रॉन्ग. ऑलराइट मिस्टर सीनियर फाइनेंस, समझ में आ गया आपको?
3: यस सर.
1: ऑलराइट, सो प्रीतेश रोल अप योर स्लीव्स. रजमिया इफ यू गॉट स्लीव्स रोल देम अप. आर यू गाइस रेडी?
2: रेडी.
1: ओके, लिसन टू दिस एंड देन आई एम गोना आस्क यू द क्वेश्चन. ओके, इस गाने की शूटिंग कौन सी कंट्री में हुई है? इट इज अ कंट्री दैट इज कंसिडर्ड इन द मिडल
3: ईस्ट. बिग प्रीतेश.
1: बिग प्रीतेश,
3: इजिप्ट.
1: डिड यू चैट जीपीटी इट?
3: नो.
1: वेरी गुड, 1-0 इन फेवर ऑफ प्रीतेश. ऑलराइट, बक अप रजमिया बिकॉज अगला सवाल अगर प्रीतेश ने करेक्टली आंसर कर दिया, हिज नेम गोज इन टू द ड्रॉ. ऑलराइट,
2: okay.
1: The next question is, इस गाने में जो हीरोइन थी उनका नाम बताओ. हीरोइन का नाम गाने में, गूगल इट, चैट जीपीटी. बिग प्रीतेश.
3: कटरीना कैफ
1: इज द करेक्ट आंसर. रजमिया मुझे पता था समथिंग, कुछ तो चल रहा है लाइफ में, बताओ क्या हुआ है, कहां डिस्ट्रैक्ट हो गए?
2: ये गाने बहुत पुराने थे. I almost forgot.
1: Are you seriously? ये गाना बहुत पुराना था इसलिए you were able to crack this contest. चलो anyways, चलो, so near yet so far, but there are plenty more opportunities. Thank you so much Razmiya for taking part. You can keep WhatsApping on our number, all right?
2: Thank you
1: very much. But Pritesh, congratulations.
3: Yes.
1: ना सिर्फ आपका नाम ड्रॉ में चला गया फॉर दिस स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अल मायरिड इन रस अल खैमा, यू हैव आल्सो गॉट योर हैंड्स ऑन टू वॉक्स टिकट्स एंड एन एफएनबी वाउचर. कांग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू सो मच.
1: अब बताओ आप कैसा लग रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, मतलब हैप्पी सैड, यू आर एवरी कॉर्पोरेट पर्सन इज एन अर्जुन रामपाल, राइट? सेम एक्सप्रेशन फॉर एनीथिंग यू गॉट टू मेंटेन. चलो बट कांग्रेचुलेशंस, आई नो अंदर से आपको बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी अंदर लड्डू फूट रहे हैं, बट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कि जब ड्रॉ हो उसमें से आप ही का नाम निकले, क्योंकि अगर आपका नाम निकला देन यू गोना विन दिस वंडरफुल स्टेकेशन. ऑलराइट, टेक केयर, दैट इज प्रीतेश, हमारे आज के ड्रॉ एंट्रेंट हैं एंड विनर हैं. आप भी इनके तरह मैसेज करते रहो, व्हाट्सएप करते रहो, एक से काम नहीं चलेगा. इट इज फ्री आफ्टर ऑल. 0543091062 इज द नंबर. जस्ट टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, स्पेस योर नेम एंड कीप व्हाट्सएपिंग इट टू अस. डोंट फॉरगेट द बिग समर सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय आवर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमायरी रसल खेमा. ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि कल एक बार फिर ये कॉन्टेस्ट में खेलने वाला हूं ऑन द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेट सेम टाइम व्हेन वन मोर ऑफ यू गेट शॉर्टलिस्टेड इनटू द लकी ड्रॉ एंड विन मूवी टिकट्स एंड एन FNB वाउचर.

0: Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: Today's weather update, sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's sub-zero fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
2: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
3: Ready, throw!
4: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
5: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
8: नमस्कार. 18 मिनट ऑन दिस ट्यूसडे की सुबह. 34 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. ह्यूमिडिटी स्टिल क्वाइट हाई 61%, पर विंड्स ब्लोइंग एट 16 किलोमीटर्स पर आवर. हाईज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 105.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ie.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: Are ho samba. तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
7: Mugambo, खुश हुआ.
8: Supriya, बताइए आप मुझे कि क्या करती हैं आप?
9: मैं स्कूल में काम करती हूँ.
8: Are you a teacher?
9: No, I'm the HR.
8: Oh, you're the HR. यार teachers जो हैं वो तो छुट्टी लेने पे बोलती हैं parents से sign करवाओ. जब उन्हें खुद छुट्टी चाहिए होती है तो आप किससे sign करवाती हैं?
9: Principal से.
8: अच्छा, इन्हें भी permission लेनी पड़ती है?
9: हाँ तो.
8: अच्छा, ये देखो हाँ तो. टीचर्स क्या बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए?
9: ओह माय गॉड, कितने उनको तो कोई भी बहाने, लाइक एनीथिंग अंडर द सन इज अ बहाना फॉर देम.
8: वाओ, देखो स्टूडेंट्स, इफ यू लिसनिंग टू अस, आपकी टीचर्स आर आल्सो एग्जैक्टली लाइक यू. उनके भी बहाने काफी हैं.
9: आई होप मेरे टीचर्स नहीं सुन रहे हो मुझे.
8: आप एचआर हो, यू डोंट हैव टू वरी.
9: होता है.
8: हाँ, मतलब बस कर देना हायर फायर. चलो यार.
9: ओह माय गॉड.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
10: मिलेगी 3-4 मिनट की देर एंड अ बिट यू नो एक और पॉकेट ऑफ ट्रैफिक अलकूज फोर्थ पर अगेन हेडिंग साउथ बाउंड देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन आज जेबीटी पर एट द जंक्शन ऑफ 44-311 पर स्पीकिंग ऑफ व्हिच हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 15 पर ऑन 311 यू विल फाइंड 5-6 मिनट की देर ऐसा ही कुछ हाल है E11 का इतिहाद रोड गोइंग टुवर्ड्स देरा फ्रॉम शारजा D62 इज अ बिट कंजेस्टेड एंड सो इज S112 शारजा इंडस्ट्रियल इन बोथ डायरेक्शंस ईस्ट एंड वेस्ट चलते हैं 611 एमिरेट्स रोड पर भी गोइंग टुवर्ड्स अलवीर हेडिंग साउथ यू विल फाइंड 3-4 मिनट की देर
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
11: आराम से रहने का ठंडा पानी टीवी देखने का मौज करने का बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ
12: क्या बोल रहा है तू यार प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं
0: Big 106.2 The beat of Bollywood.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: हां जी 10:16 हो चुके हैं. ज़ोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स ऑल द वे अंटिल 2. फिलहाल अगर ये आपके मन में भी आया है थॉट एंड यू ऑलवेज यू नो सैट एंड फेल्ट बैड अबाउट हाउ एवरीवन अराउंड यू इज एबल टू ईट हाउ मच एवर दे वांट एंड नॉट गेन वेट, लेकिन आप अगर कुछ भी खा लो, एक चॉकलेट आपने चखी, अगले दिन आपकी 2 kg बढ़ गए, जस्ट लाइक व्हाई डज दिस हैपन विद मी. देन आई हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग पोस्ट दैट लिस्ट्स आउट फूड आइटम्स जो आप खा सकते हो इन लार्ज क्वांटिटीज, है ना, भर भर के जितना खाना है दिन में आप खाओ, बट यू विल एंड अप लूजिंग वेट इंस्टेड ऑफ गेनिंग. इज इन दैट ऑसम? हाँ, अब देखो आपको सब कुछ तो नहीं मिलेगा, ऐसे भी नहीं कि आप भर भर के खाना खा रहे हो और जो खा रहे हो वो ऐसे गजब टेस्टी चीज है, मतलब इतना स्वाद हो, इसमें मसाले पड़े हो, ये पड़ा हो, कैलोरी सब कुछ हो, ये नहीं हो सकता, है ना. यू हैव टू गिव अप अ लिटिल बिट समवेयर. सो इफ यू वांट टू ईट मच एंड नॉट गेन वेट देन यू आर गोना हैव टू गिव अप समवेयर, राइट. टेस्ट में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो यहां पे मेरे सामने एक लिस्ट आई है, आई एम गोना रीड इट आउट, सो मे बी यू कैन देन इंडल्ज इन दीज स्नैक्स व्हेन यू कॉल पीपल ओवर और व्हेन यू आर हैविंग दैट मूवी नाइट और व्हाटएवर. अपने लिए ये एक स्नैक साइड पर रख देना. नंबर वन ऑन दिस लिस्ट, क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह बहुत सारे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स जो है वो थोड़े फैटनिंग होते हैं, सो वो आप भर भर के नहीं खा सकते. बट क्यूकम्बर एंड वाटरमेलन आप चाहे जितना भी खा लो, यू ईट बोल्स एंड बोल्स ऑफ इट, यू विल स्टिल नॉट गेन वेट. सो इफ यू क्रेविंग समथिंग फ्रेश, इनफैक्ट अगर आप पानी भूल जाते हो पीना, देन मे बी कीप द स्नैक हैंडी घर पर एंड इट्स वेरी लाइट एंड इट इज सरप्राइजिंगली वेरी वेरी फिलिंग. तो अगर आपको कुछ खाना है नॉट गेन वेट, मे बी इंडल्ज इन दैट. Egg whites and Greek yogurt. This combination works really, really well. Especially when you're very hungry, this combination is perfect for you because it's very high on protein and it's very light calories for you. And obviously because it's egg, so it's completely, you know, it's very full and filling. Number three pe hai, we have berries and spinach. Now this is, I think, काफी लोगों का favorite because हल्का हल्का खट्टा मीठा सा taste भी होता है इसमें, so it is flavorful also for you. It's not just bland. थोड़े से टाइनी कैलोरीज है बट वेरी बिग न्यूट्रिएंट्स फॉर यू ऑन दिस, सो इट विल बी मोर वॉल्यूम ऑन द प्लेट. खा के आपको फुल भी लगेगा एंड इट इज़ अ सिंपल फीलिंग, इट्स अ ट्रिक फॉर फीलिंग फुलर. नंबर फोर पे है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन क्योंकि हर किसी के टेस्ट चॉइसेस ये प्रेफर नहीं करेंगे. टूना एंड श्रिम्प बेसिकली. I don't like it. ये मैं बिल्कुल भी ना खाऊँ, मैं नहीं खाती. It's lean protein, it fills you up fast. So if basically you are someone who's into seafood, then tuna and shrimp का combination is really good for you. ये I think बहुत ही देसी मतलब नुस्खा है. Next one, it's pickles, olives and mango pickles. ये अगर आपको खट्टा खट्टा खाने का बहुत शौक है, I've seen so many people जो इमलियाँ खा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं, they have a habit of eating these things. So this is when your diet feels boring. आपको ऐसे लग रहा है कि आपके डाइट में कोई टेस्ट नहीं, सो दिस ऑन द साइड यू कैन हैव जस्ट टू एड दैट लिटिल बिट ऑफ चस्का. इट्स फ्लेवर दैट saves you and a little bit of crunch with salt and spice. It can, you know, stop random snacking jo aap chips wagera mein kar rahe hote ho. Then we have broccoli and cauliflower. This is something that can make your plate look bigger. It's very filling also, but it is without making any big calorie counts, hai na, kyunki calorie bahut kam hai isme. Tofu and edamame. This is if you feel like aapko chicken wagera khane ka bahut man kar raha hai, lekin kabhi kabhi wo jo aap cheese kha rahe hote butter chicken wagera usme bahut zyada aapka fattening ho jata hai. इसमें वो सब नहीं होगा. इट्स प्लांट प्रोटीन दैट कीप्स यू फुल एंड ऑल्सो एड्स फाइबर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉपकॉर्न. येस, पॉपकॉर्न इज समथिंग दैट यू कैन ईट एंड नॉट गेन वेट. इनफैक्ट आप लूज भी कर सकते हो. पॉपकॉर्न इज अ वेरी वेरी लाइट स्नैक, सो यू कैन डेफिनेटली बी इंडल्जिंग इन दैट. तो मूवी नाइट वगैरह में पॉपकॉर्न इज द आइडियल. मेक श्योर कि उसमें आपने एक्स्ट्रा वो जो होता है थोड़ा बहुत ऐड करना, कैरमल वगैरह वो नहीं करना, बिकॉज दैट उल्टा इज गोइंग टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी. एनी वे, इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, मेक श्योर दैट यू ट्राई इट दिस वीकेंड विदाउट हैविंग टू यू नो ईट समथिंग एंड गेनिंग वेट. दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू रिड्यूस weight.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital, Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Henna Speedy Easy Hair Color.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: 35 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा फिलहाल एट 58%। इट इज पार्टली सनी, थोड़ा सा क्लाउडी विच इज सॉर्ट ऑफ अ रिलीफ। हाइज आज जाएंगे 36 तक, विच इज ऑल्सो अनदर रिलीफ की 38 तक नहीं जा रहा टेम्परेचर। लोज गिरेंगे आज 32 तक। इट्स 10:24। गुड मॉर्निंग।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, लेट्स हैव अ लुक। अगर आप E311 पर है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, तो आपको मिल सकता है थोड़ा सा ट्रैफिक हेडिंग टुवर्ड्स सवार 1। उसके अलावा अगर आप है D85 बनिया स्ट्रीट, वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स। तो R3 के पास थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाएगा। खबैसी स्ट्रीट पर अगर आप है तो वहाँ पे भी E11 इतिहाद स्ट्रीट नाहदा 1 की तरफ जाते हुए हैवी ट्रैफिक है। ऑल्सो D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट बंपर टू बंपर ट्रैफिक फॉर अबाउट 7 to 8 मिनट्स। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305।
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big. Woo! Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

लव द अर्ली 2000s फॉर दीज ट्रैक्स यार. ये ट्रैक्स के लिए हमारे दिल में एक स्पेशल जगह है और हमेशा ही रहेगी. ठाकर के आपने सुना ऑन द बिग मिक्स. वी आर हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो बिल्कुल ठाकर के ही. एंड इनफैक्ट इन द सेकंड आवर ऑफ द शो अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट आई वुड लव टू हैव विद यू बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू राइट. आई मेक श्योर कि आपका दिन बोरिंग ना जाए. बस वेदर इट इज दैट मीटिंग दैट यू आर हेडिंग फॉर, लंच प्लान कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो यार, आई एम गोना मेक श्योर वी प्ले यू द बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स, ऑल्सो द मोस्ट फन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस right here on the Big Mix with me, Zora.

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: हां जी, 11:17 हो चुके हैं. Zohra के साथ आप on the Big Mix, the Jawani song आपने सुना right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. You know, it just gets me thinking all the time जब मैं ये गाने सुनती हूँ, and then you know that, you know, it's a Karan Johar movie and इसमें सारे nepo babies होते हैं. हर किसी को बैठे बैठे मौका मिल जाता है. For some people it is easy to be, you know, honest. Yes, of course, ऐसे नहीं है कि मतलब एक बार just because nepotism चल गया तो मतलब throughout your time in Bollywood आपको वही, you know, फ़ायदे मिलते रहेंगे. कभी कभी नहीं मिलते. कभी कभी life teaches you a lesson and it just throws you in this corner and then you have to prove your worth to actually get those opportunities. But I feel like कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही difficult होता है. Now, I recently watched this show on Amazon Prime called Raakh, ठीक है? And it's spine-chilling. I have to say it because obviously it is inspired by events. ये सच में हुआ है. That makes it all the more terrifying to even imagine loosely कि ये real life में किसी के साथ हुआ था. It honestly, आपको जिगरा चाहिए to watch a show like this because when you watch it and you start thinking कि ये जिसके साथ सच में हुआ उन पे क्या ही बीती होगी, and you know, like the mindset, it's just really really terrifying. So the actor who played the lead antagonist, the lead villain in the movie, in the show, Akash Makhija उनका नाम है, and he suddenly shot to fame obviously because of the show. इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है उस शो में दैट यू लुक एट हिम एंड यू आर स्केर्ड. इवन राइट नाउ, यू नो, एज ही इज डूइंग लाइक प्रेस टूर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इंटरव्यूज कर रहे हैं, लोगों से बात करें. इनफैक्ट आई हैड अ चैट विथ हिम एज वेल ऑन सोशल मीडिया, वहाँ पे भी मेरी बात हुई है, एंड ही स्पोक सो स्वीटली, सो नाइस थिंग. इट जस्ट गॉट मी टू थिंक लाइक हाउ ही कुड सो, यू नो, परफेक्टली पोर्ट्रे दैट इविल कैरेक्टर एंड देन इमीडिएटली स्नैप आउट ऑफ इट बिकॉज दैट्स जस्ट हु ही इज इन रियल लाइफ. ही इज अ नाइस पर्सन, बट इतने कन्विक्शन के साथ वो रोल प्ले किया दैट पीपल आर जस्ट इन ऑ ऑफ, यू नो, हाउ टैलेंटेड, इमेंसली टैलेंटेड. लेकिन ये जो टैलेंट है ना, कभी कभी इनफ नहीं होता. यू नीड गुड किस्मत, यू नीड गुड वास्ता, यू नीड मैनी थिंग्स टू वर्क इन योर फेवर, तब जाके इस इंडस्ट्री में आपको चांस भी मिलता है. एंड ही जस्ट हैड एन इंटरव्यू रिसेंटली जहाँ पे ही स्पोक अबाउट हाउ कास्टिंग यूजली वर्क्स एंड इट इज एक्चुअली सो सैड. यार
2: मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी फनी चीजें मैंने देखी है रामनगर में. एक्टर्स बाहर खड़े होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर अंदर है, वो ऑडिशन कर रहे हैं, सब बाहर खड़े हैं. कास्टिंग डायरेक्टर बीच में आधे घंटे बाद आएगा, एक दरवाजा खुलेगा, आप फिट, आपने आपका लुक पिस में नहीं जा रहे. जिसको बोला लुक नहीं जा रहा है, वो बंदा जाके अपना लुक चेंज करके वापस आया है पूछने कि क्या मैं फिट हूँ. आप उस इंसान का दिमाग सोचिए जो ये करके आया है. मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट दैट आई वॉन्ट टू गिव दिस ऑडिशन, बिकॉज उसकी एक दुनिया चल रही है अलग.

0: और यहाँ पे आपको भीड़ में है आप.
1: That is so beautifully put, right? कि in your head आपकी अलग ही दुनिया चल रही है. That is such a nice way of putting it across, because no matter what people are saying or what people are doing, in your head you have made up your mind about something and you will do it by hook or by crook. आपको मना भी कर दिया casting director ने without even giving you a chance, just by taking one glance at you. नहीं, this does not work. And he goes all the way, puts all the effort to change that look completely. कि मुझे एक और मौका दे दो, मेरी तरफ एक और बार देख लो कि आपको लगे मैं फिट हूँ. That is exactly what, you know, people have to go through. That is how much they try and how much they struggle to even get one opportunity. In fact, Akash Makhija himself said it, that he had to go through at least 700 rounds of auditions. I think 700 people, in fact, and multiple rounds of auditions across all these 700, 800 people. And in fact, वो काफ़ी बार reject भी हो गए थे, एंड इट वॉज इवेंचुअली अ कॉल बैक दैट ही गॉट फाइनली आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ फेलियर दैट आप सिलेक्ट हो चुके हो. सो इट इज नॉट समथिंग दैट कम्स टू यू ईजी. समटाइम्स इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड विच इज वाई दे वैल्यू इट सो मच. एंड वो जेन्युइन एक जो क्वालिटी है ना, वो उनमें नजर आती है इन एक्टर्स में. एंड आई फील लाइक आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट. एंड आई फील ऑल दीज एक्टर्स दैट यू सी ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो छोटे से छोटा रोल ही क्यों ना हो, यू शुड बी अ लॉट मोर अप्रिशिएटिव दैट.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
4: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
3: अलरास बोले तो
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
3: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
5: This summer, drive home a new Jetour SUV. Buy now, pay next year, zero VAT or zero interest with EMIs starting from 966 dirhams. TNCs apply.
6: Listen to her every day.
7: Mugembo! खुश हुआ।
8: सुप्रिया बताइए आप मुझे कि क्या करती हैं आप?
9: मैं स्कूल में काम करती हूँ।
8: आर यू अ टीचर?
9: नो, आई एम द एचआर।
8: आर यू द एचआर? यार टीचर्स जो हैं वो तो छुट्टी लेने पे बोलती हैं पेरेंट्स से साइन करवाओ, जब उन्हें खुद छुट्टी नहीं होती तो आप किससे साइन करवाती हैं?
9: प्रिंसिपल से।
8: अच्छा, इन्हें भी परमिशन लेनी पड़ती है?
9: हाँ तो।
8: अच्छा ये देखो, हाँ तो। टीचर्स क्या बहाने देती हैं छुट्टी लेने के लिए?
9: ओ माय गॉड, कितने, उनको तो कोई भी बहाने, लाइक एनीथिंग अंडर द सन इज अ बहाना फॉर देम।
8: वाओ, देखो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, आपकी टीचर्स आर आल्सो एग्जैक्टली लाइक यू, उनके भी बहाने काफी हैं।
9: आई होप मेरे टीचर्स नहीं सुन रहे हो मुझे।
8: आप एचआर हो, यू डोंट हैव टू वरी।
9: होता है।
8: हाँ, मतलब बस कर देना हायर फायर। चलो यार।
9: ओ माय गॉड।
2: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
11: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 35 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, हाईज आ जाएंगे 36 तक, लोज आर एक्सपेक्टेड टू डिप डाउन टू अबाउट 32, ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए 59% पे पहुंच चुकी है।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
3: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
1: Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 11:47 ho chuke hain. Zohra ke saath ho aap on The Big Mix. We're heading into our number 3 of the show. Bahut hi interesting news coming my way. Matlab imagine yaar, aise maine sirf apne like बैठे बैठे रैंडम इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं ना, तब मैंने ऐसे सोचा था. मूवीज देखकर ही इंस्पिरेशन आता है कि समटाइम्स यू फील लाइक इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे क्राइम हो रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड, ये सब कुछ हो रहा होता है. समटाइम्स यू फील लाइक जो लॉज है अलग अलग जगहों के, दे डोंट डू जस्टिस, राइट. समटाइम्स यू फील लाइक नहीं यार, इसके लिए तो और बुरी सजा होनी चाहिए, या इसके लिए यार कुछ और अच्छा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग. वट एवर हैज़ बिन डन इज नॉट इनफ. सो समटाइम्स यू फील लाइक हमें ये अपना ये जो मतलब जस्टिस है, कानून है, इसको हमें अपने हाथों में लेना चाहिए. ये ऐसे इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, वी डोंट एंड अप डूइंग इट. बट एक जगह है जहां पे किसी ने कहा बस इनफ इज इनफ, ये चोरी चकारी बहुत हो गई, अब मुझे मामला अपने हाथों में लेना होगा. एंड ही डिसाइडेड टू बिकम दिस अनलाइसेंस्ड विजिलेंटी. And he went around making sure कि justice is served on a personal level. ये क्या किया, मैं किस इंसान की बात कर रही हूँ, कहाँ पे हुआ, what is this whole story about? Let's get into that in the next hour. You're with me, Zohra. A very good afternoon.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2. The beat of Bollywood. The Big Chill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz? Yes or no?
2: There is somebody who is celebrating Etihad Rail. It is Iftikhar. Bhai, matlab jaldi lao. कितने टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं एतिहाद रेल का, बताइए?
3: बहुत टाइम से रेल में, मेरा असल में ना देखिए, मैं बहुत ट्रैवलर हूँ, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, और सबसे मेरा जो पसंदीदा मोड ऑफ ट्रैवल है वो ट्रेन है।
2: आई कांट अग्री विद यू मोर यार, मतलब किसी कंट्री में जाने का उस कंट्री का जो एक एसेंस है ना, उसको उसका अगर आपको मजा लेना है तो ट्रेन में डेफिनेटली ट्रैवल करना है, करेक्ट?
3: एग्जैक्टली। और दूसरा असल में ना बचपन की बड़ी यादें हैं ट्रेन के साथ, हमारे यहाँ वो पुराने दौर में इंजन चलता था जो कोयले से चलता था।
2: लिटरल छुक छुक गाड़ी।
3: और हमारे उधर क्या है ना, छोटे छोटे गांव आते हैं तो लोग रास्ते में मतलब जो भी है ना उस गांव का या उस एरिया का वो फ्रूट लेके आ जाते थे, फ्रेश फ्रूट। हाँ, दूसरा ये है कि वो बहुत सस्ते होते हैं, यानी मार्केट के हिसाब से भी वो आपको वैसे ही दे देते हैं इतने सस्ते दाम।
2: बिल्कुल, कर दी ना देसियों वाली बात, मुझे पता था एंड में ये यही बोलोगे।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 12:15 हो चुके हैं, ज़ोहरा के साथ हो आप।
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Yes, that's right. With me, Zohra, until 2, and we are currently talking people who, you know, gave up on the system and decided to take matters in their own hands because patience nahi raha aur justice jo aap de rahe the wo usse hum khush nahi the to humne mamla apne haathon mein le liya. Aise hum sochte hain bahut bari lekin kar nahi pate hain. But Mexico mein ek aadmi hai jinhone decide kiya ki ab bas hai na, ab mujhse bardasht nahi ho raha to ab main ye khud niptaunga. Basically Mexico mein kuch chor chakare hain ghoom rahe jo you know bikes wagera bahut churane lag gaye the ya car parts ya jo bhi hai ye sab churane lag gaye the. And I think this man lost it because he said mere saath bhi bahut zyada chori ho chuki hai and the government or the system is not doing anything about it. To ab mauka aa chuka hai, time aa chuka hai, waqt aa chuka hai ki main khud ban jaun ek superhero. So now in Mexico, this unidentified man who people are calling as Mexico ka Batman, he is going around catching all these thieves and making sure that they are tied to a street lamp or a pole with duct tape. डक टेप आपको पता है ना कितना स्ट्रॉन्ग होता है. डक टेप से पूरा हेड टू टो उनको चिपका दिया है पोल्स पे, उनका मुंह भी बंद कर दिया है टेप के साथ और उनके मतलब होठों के पास वो कैट विस्कर्स नहीं होते, कैट विस्कर्स बनाकर उनके माथे पे मार्कर से चोर लिखकर वो जा रहे हैं. बेसिकली ही इज डूइंग व्हाट द पुलिस शुड बी डूइंग, व्हाट द पुलिस शुड हैव बीन डूइंग ऑल दिस व्हाइल विद दीस थीव्स. ही इज मेकिंग श्योर दैट ही कैचेस ऑल दीस बाइक थीव्स, टेपिंग देम अप टू पोल्स, राइटिंग थीव्स ऑन देयर हेड एंड जस्ट लीविंग देम देयर कि पुलिस आए सुबह तक इनको पकड़े और इनको मतलब जस्टिस फिर देखा जाए. बट पकड़ने का काम जो है अब इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है. पीपल आर कॉलिंग हिम द विजिलांटी ऑफ द प्लेस. मेक्सिको का विजिलांटी है ये, मेक्सिको के बैटमैन है ये. ऑब्वियसली पुलिस इज ऑन द हंट फॉर हिम राइट नाउ बिकॉज आप इलीगली ये सारा काम नहीं कर सकते. इवन दो आप सही काम कर रहे हो, चोरों को पकड़ रहे हो, लेकिन आप भी टेक्निकली उनके रडार में आ चुके हो एंड यू विल ऑल्सो बी कॉट इवेंचुअली. बट इट जस्ट गॉट मी टू थिंक यार, व्हाट अ सुपर हीरो, राइट? मतलब गोइंग अराउंड कैचिंग थीव्स, चोर को पकड़ता है ये सुपर हीरो रात में निकल के या तो मास्क पहन के, केप लगा के. आई एम जस्ट इमेजिनिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक्चर इनका एक यूनिफॉर्म जो है, एक लुक जो है क्या होगा. एंड आई एम जस्ट trying to think, if you had to give a name to this superhero, what creative name could you give this superhero? Hai na, bike man, car man, pata nahi. I'm just trying to think, if you can come up with a creative name for this superhero who goes around catching thieves, car thieves and bike thieves specifically, to aap inko kya creative naam dete? Think and let me know. 800-1062 is the toll free number. Call as creative as you can get. Agar aap mujhe creative naam de doge, main aapko gift dungi.

0: नहीं नहीं नहीं आप तो खाम खा डर रही हैं, मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
2: गुस्सा आ रहा है, देखिए।
0: ये गुस्सा नहीं है।
3: Big 106.2, the beat of Bollywood. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
5: ये है ज़ोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Mexico ka Batman discuss kar rahe hain hum. This one man who decided to take justice in his hands. Ye bikes jo chori ho rahi thi din dahade raat ko bhi. Din raat bas choriyan ho rahi thi. And the system did nothing about it. He said ki main in choron ko pakdunga. Inhein tape se chipkaunga. Duct tape se pole se chipkaunga. Unke maathe pe likhunga ki ye chor hai. And I will make sure ki main police ko sikhaun. This is how you get it done. मैंने एक आपसे पूछा कि अगर इस सुपर हीरो को आप नाम दे सकते तो क्या नाम देते? अहमद इज विद मी ऑन द फोन लाइन. हाय अहमद.
2: हाय ज़ारा, कैसे आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो?
2: जी मैं ठीक हूँ.
1: क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो?
2: जी मैं अभी फील्ड वर्क पे था, अभी वापस घर जा रहा हूँ.
1: वापस इतनी जल्दी घर जा रहे हो? अरे एडवांटेज, वेरी गुड. ऐसे तो जॉब का एडवांटेज हमें भी चाहिए कि जब मन करे घर चले जाए तो इन दहाड़े.
2: जॉब नहीं है ये, सेल्फ एम्प्लॉयड.
1: वेरी नाइस. ये आई थिंक सबसे बेस्ट है आजकल के टाइम में, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना. अपनी मर्जी से जाओ, अपनी मर्जी से आओ. आई थिंक आप सुपर हीरो इन योर सेल्फ हो. लेकिन अगर आप एक सुपर हीरो नाम दे सकते इस इंसान को जो मेक्सिको में है, जो चोर को पकड़ रहे हैं, क्या नाम दोगे?
2: पहले तो ये जनाब को हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तालियां,
1: है ना? यस, चलो तालियां.
2: बाइक चुराने वाले, बाइक से
1: ऐसे हमारे कंट्री में भी होना चाहिए, हमारे देशों में भी होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए.
2: हमारे शहर में बहुत है वैसे चोर चक्के,
1: बहुत है. अच्छा, तो आप अगर सुपर हीरो नाम दे सकते हैं ये जो बाइक्स को मतलब चोरी होने से बचा रहे हैं, क्या सुपर हीरो नेम देते हैं?
2: मैं मेरे हिसाब से क्रिएटिव नेम उनका होना चाहिए बाइक प्रोटेक्टर.
1: बाइक प्रोटेक्टर,
2: बाइक चुरा रहे हैं और ये रखवाली कर रहे हैं उसकी.
1: हाँ,
2: तो उनका नाम होना चाहिए बाइक प्रोटेक्टर.
1: अच्छा, तो आप ये मैन वैन के नाम पे नहीं खेल रहे कि यू नो बाइक मैन, कार मैन? आप मैन वैन के नाम से नहीं खेलते?
2: बाइक
1: प्रोटेक्टर विल शो की ये प्रोटेक्ट करते हैं,
2: बाइक की हिफाजत कर रहे हैं ये. हाँ. तो बाइक प्रोटेक्टर और स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर प्रोटेक्टर,
1: बाइक प्रोटेक्टर. हाँ, ये सही नाम है. पहले आपने कहा स्पेयर प्रोटेक्टर.
2: हाँ, स्पेयर जी, तो स्पेयर प्रोटेक्टर.
1: स्पेयर प्रोटेक्टर, स्पेयर प्रोटेक्टर.
2: इंजन, बैटरी, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं ना ये लोग.
1: फिर ये चोर चकारों में डायलॉग बन जाएगा कि जल्दी जल्दी चोरी कर ले, नहीं तो बाइक प्रोटेक्टर आ जाएगा. बढ़िया बढ़िया नाम है यार. चलो लेट्स होप कि हमारे में भी यहाँ पे भी जल्दी ऐसे बाइक प्रोटेक्टर्स आ जाए, क्योंकि हम भी तंग आ चुके हैं भाई लोकी इससे. चलो यार, थैंक यू अहमद. होप आपके साथ ये चोरी चकारी ना हो, और अगर हो तो आपके भी कोई प्रोटेक्टर आ जाए, है ना. चलो, हैव अ ग्रेट डे, बाय.
2: थैंक यू.
1: That was Ahmed with us on the phone line. इन्होंने कहा इनको सुनने का दिल कर रहा है, चांद मेरा दिल का टाइटल ट्रैक. So that's exactly what's coming up next for you, Ahmed, right here on the Big Mix.
0: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2 The Beat of Bollywood The Big Mix brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247. Missed your morning buzz? Yes or no?
2: There is somebody who is celebrating Etihad Rail. It is Iftikhar bhai, matlab jaldi lao. कितने टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं एतिहाद रेल का बताइए?
3: बहुत टाइम से रेल में, मेरा असल में ना देखिए मैं बहुत ट्रैवलर हूँ, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और सबसे मेरा जो पसंदीदा मोड ऑफ था वो ट्रेन है।
2: आई कांट एग्री विद यू मोर यार, मतलब किसी कंट्री में जाने का उस कंट्री का जो एक एसेंस है ना उसको उसका अगर आपको मजा लेना है तो ट्रेन में डेफिनेटली ट्रैवल करना है, करेक्ट?
3: एग्जैक्टली। और दूसरा असल में ना बचपन की बड़ी यादें हैं ट्रेन के साथ, हमारे यहाँ वो पुराने दौर में इंजन चलता था जो कोयले से चलता था।
2: लिटरल छुक छुक गाड़ी।
3: और हमारे उधर क्या है ना, छोटे छोटे गांव आते हैं तो लोग रास्ते में मतलब जो भी है ना उस गांव का या उस एरिया का वो फ्रूट लेके आ जाते थे, फ्रेश फ्रूट। हाँ, दूसरा ये है कि वो बहुत सस्ते होते हैं, यानी मार्केट के हिसाब से भी वो आपको वैसे ही दे देते हैं इतने सस्ते दाम।
2: बिल्कुल, कर दी ना देसियों वाली बात, मुझे पता था एंड में ये यही बोलोगे।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae।
4: ट्रैफिक का हाल फिलहाल, अगर आप E311 लेकर जा रहे हैं S12 शारजा रिंग रोड की तरफ तो आपको मिलेगा एक कार एक्सीडेंट की वजह से काफी डिले एग्जिट 60 के पास। दिस इज अराउंड D93 नाहदा स्ट्रीट एग्जिट। इनफैक्ट वहां पे बिकॉज ऑफ द कार एक्सीडेंट एटलीस्ट अबाउट अ 12 मिनट डिले हैज बीन एक्सपेक्टेड ऑन दैट रोड। E11 इतिहाद रोड, अगर आप खबैसी स्ट्रीट से नाहदा 1 की तरफ जा रहे हैं बबर बबर ट्रैफिक वहां पे। उसके अलावा D83 रिबात स्ट्रीट पे फेस्टिवल सिटी के पास लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। बट द नादल हमार जंक्शन वहां पे बादिया एग्जिट अगर आप ले रहे हो अनदर कार एक्सीडेंट 5 to 6 minutes ka delay. Any other update, let us know on 4305.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए GoChat कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 35 डिग्री सेल्सियस बाहर, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 59% पे, लोज आ जाएंगे 32 तक एंड हाईज इससे ज्यादा होपफुली नहीं जाएंगे।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurancemarket.ie.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अंजी जोहरा के साथ ऑन द बिग मिक्स. करंटली हम बात कर रहे हैं, अगर आपको एक प्यारा सा एस्केप चाहिए, क्योंकि समर जैसे ही आता है, दैट्स ऑल यू वांट, द परफेक्ट एस्केप विद योर फैमिली. एंड अगर वो हम आपको दे सकते हैं, वो भी इतनी स्टनिंग प्रॉपर्टी में, आई डोंट थिंक यू गोना आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, बिकॉज दिस समर बिग 106.2 इज गिविंग यू द अल्टीमेट स्टे ऑन बिग समर सरप्राइजेस. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सर सलमायरा रास अल खैमा में. इतनी खूबसूरत जगह है, यहां से जाने का दिल ही नहीं करेगा आपका. परफेक्ट place to relax, unwind and make memories. This is the stunning Rixos Almira in Ras Al Khaimah. You can chill by the pool, have the brilliant food over there and just, you know, make memories. Wahan pe enjoy karna hai. Saath hi saath daily prizes jeetne ka mauka, including 500 dirhams worth movie tickets, F&B vouchers every single day. Just make sure you're listening to The Big Breakfast and The Big Thrill. Aapko bas participate karna hai. WhatsApp pe hamari entries bhejni hai aapko. 0543091062 hamara WhatsApp number hai. 0543091062 type karke bhejna hai BSS space apna naam. BSS space your name to 0543091062. We'll have your entries and you could possibly be winning this beautiful staycation at Rixos Almira in Ras Al Khaimah. Yaar, Big Summer Surprises presenting sponsor Skechers. Title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almira Ras Al Khaimah, only on Big 106.2.

0: सेवा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले वक्त।
1: Beat 106.2, the beat of Bollywood. Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zuleika Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
2: Mugembo, khush hua.
3: ना न्यू ड्राइवर ओके, कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वाज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे। मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहां लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
4: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
3: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
5: Hey, jaldi hata tera khatana. Chal hata. Are jaldi hata yaar sunna.
1: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Traffic का हाल धाल, अगर आप E311 लेकर जा रहे हैं S12 Sharjah Ring Road की तरफ तो आपको मिलेगा एक कार एक्सीडेंट की वजह से काफी डिले एग्जिट 60 के पास। दिस इज अराउंड D93 नाहदा स्ट्रीट एग्जिट। इन फैक्ट वहां पे बिकॉज ऑफ द कार एक्सीडेंट एटलीस्ट अबाउट अ 12 मिनट डिले हैज बीन एक्सपेक्टेड ऑन दैट रोड। E11 इतिहाद रोड, अगर आप खबैसी स्ट्रीट से नाहदा 1 की तरफ जा रहे हैं, बबर बबर ट्रैफिक वहां पे। उसके अलावा D83 रिबात स्ट्रीट पे फेस्टिवल सिटी के पास लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, बट द नादल हमार जंक्शन वहां पे बादिया एग्जिट अगर आप ले रहे हो, अनदर कार एक्सीडेंट 5 to 6 मिनट्स का डिले। एनी अदर अपडेट लेट अस नो ऑन 4305।
1: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द यूएई स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं।
1: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उड़ी बाबा।
2: बिग 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour आपने सुना, brought to you by Insurance Market. पलक मुचाल की आवाज, राकेश कौन तुझे. कभी कभार शो करते करते भी कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं. जैसे अगर इश्क की बात करो तो 7 स्टेजेस ऑफ लव अगर आपको पता है, तो उसी भी मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: और मेरे दिमाग में आ भी गया है कि हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा. शायद किसी दिन आप वो देखेंगे वर्चुअली, यू नो, ऑन डिजिटल. वेल, राइट नाउ यू लिसनिंग टू मी ऑन बिग 106.2 एंड इट इज टाइम टू गेट बैक टू द रियल साइड ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज नॉट अबाउट रूमी और द क्लासिक्स ऑफ सूफिज्म, बट यस, वी गो बैक व्हेन सूफिज्म वाज एट इट्स पीक. मुगल्स के टाइम पे जाते हैं और मुगल्स के टाइम पे ये शाही पकवान आया था. बहुत बहुत पॉपुलर खाना है ये आज की डेट में भी. इट जस्ट स्मेल्स इन योर माउथ, इट रोमांसेस इन योर माउथ, लिटरली. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? मिंस्ड फाइन ऑन अ स्टोन विद अ टेक्सचर लाइक सिल्क. आई एम सॉफ्टर देन बटर एंड स्मूदर देन मिल्क. आई स्मोक ऑन द चारकोल, अ किंग ऑफ द ग्रिल. वन बाइट ऑन योर टंग एंड योर सेंसेस विल थ्रिल. Once again, minced fine on a stone with a texture like silk, I'm softer than butter and smoother than milk. I smoke on the charcoal, a king of the grill. One bite on your tongue and your senses will thrill. 800-1062 is my toll-free number, which is 800-1062. I repeat, 800-1062 is my toll-free number. Dial in right now as I give you Kailash here, and the track is called Teri Diwani. Isme bhi bahut kuch hai jahan par ek rasta nikal raha hai. एक ऐसी दीवानी से और एक ऐसे दीवाने से जो एक दूसरे की तरफ पहुंचना चाहते हैं लेकिन जो अंजाम है शायद अधूरा रह जाता है. टेक इट अवे आपके साथ अंटिल 5. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ उज्जवल खन्ना के साथ. वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast track song of the hour brought to you by Self Drive. Aapne suna Clinton Serio Buzz. The track is Kya Karu from the film Wake Up Sid. Kuch karna ka hai, isme to bas khana hai.
0: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बस आपके जो हाथ है उसको थोड़ा सा आहिस्ता से रखना है आपको, है ना। बहुत ज्यादा रख दोगे हाथ तो फिर आपको पता है कि पेट गड़बड़ा जाएगा, हालांकि ये पता नहीं चलता इतना आप खा लेते हो। बिग 106.2 पे आप हैं उज्जवल खन्ना के साथ। फूड ट्रेल्स में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था अबाउट दिस वेरी सिंसिलेटिंग स्टार्टर कम मेन कोर्स, यू नो यू कैन आल्सो डू इट ऑन द साइड विद सम ग्रेट रुमाली रोटी। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मिंस्ड फाइन ऑन अ स्टोन विद टेक्सचर लाइक सिल्क, आई एम सॉफ्टर देन बटर एंड स्मूदर देन मिल्क, आई स्मोक ऑन द चारकोल, किंग ऑफ द ग्रिल, वन बाइट ऑन योर टंग एंड योर सेंस will thrill. What am I talking about? Of course, Shami Kebabs. Zeba, thank you very much for your answer. क्या टेस्टी होते हैं शामी कबाब, गलौटी कबाब। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने कभी नहीं चखे, लेकिन हम अपने तरीके से जो कबाब्स हैं वो बना लेते हैं सोयाबीन से एंड ऑल दैट थिंग, बट मुगल्स के टाइम से ये आ रहा है। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कबाब्स, उस समय यू नो चबाया नहीं जाता था या फिर उनको मन नहीं था चबाना के लिए, क्योंकि इतनी रॉयल्टी होती थी। तो उन्होंने कहा कि अपने जो खान सामा है उनको बोला कि कुछ ऐसा बनाओ कि मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े खाने में। सो then they came out with this thing which is all about, you know, kebabs in your mouth, and then came in Gulati kebabs, and now it is a center of attraction. Kabhi bhi aap Lucknow jao to wahan pe aap zarur try kijiye, kabhi aap Hyderabad jao, kisi bhi Mughalai shehar mein aap jaoge to aapko kuch na kuch reminiscence us Mughalai daur ke milenge aapko. Stay logged on to Big 106.2, suna Mohit ki awaaz mein ye gaane ka bhi jo ehsaas hai, jo lutf hai, jo swaad hai, uske saath mil jata hai. The track is a Afimi aapke saath until 5. Aap sun rahe hain The Big Life, Big 106.2 pe. We are the beat of Bollywood.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
2: सुनो जियो खुश रहो मुस्कुराओ क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugembo! खुश हुआ।
5: सुना मैं न्यू ड्राइवर हो के कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे। मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहाँ लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
6: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
5: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
7: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल on The Big Life. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: 96.2, the beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
4: हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता।
0: This is Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
5: तरफ पड़ने वाली
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: हेलो हाय गुड इवनिंग टू यू बिग 106.2 पे उज्ज्वल खन्ना के साथ हैं आप टेम्परेचर राइट नाउ इज 36 डिग्री सेल्सियस वी गो डाउन टू मिनिमम ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी अबाउट 55% अब नेक्स्ट कम्स इन ये तूने क्या किया जावेद बशीर की आवाज
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडिल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई ओमान कतर केएसए एंड बहरीन विजिट alras.me बिग 106.2 Big 106.2 Song of the Hour brought to you by InsuranceMarket.ae

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बड़ी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: हेलो हाय, गुड इवनिंग टू यू। बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ हैं। अल एतियाद स्ट्रीट पे अगर आप हैं तो ट्रैफिक आपको मिलेगा स्लो मूविंग। ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ कमोशन ऑन 311। देयर इज एन एक्सीडेंट दैट्स बीन रिपोर्टेड नियर एतिसलात एकेडमी, वहाँ पर आपको मिलेगा ट्रैफिक। D97 अमान स्ट्रीट के आसपास आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। बात करूँ अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया 1 के आसपास आपको ट्रैफिक मिलेगा, वहाँ पे भी अलनारा शारजा ट्रैफिक देयर एज वेल। शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 2, अलकेसेस 4th, स्लो मूविंग ट्रैफिक देयर एज वेल। बात करूँ दुबई की डाउन टाउन साइड पर हैं आप तो बिजनेस बे के आसपास DIFC स्लो मूविंग ट्रैफिक इन द बाई लेंस एज वेल। एंड अगर आप JVC के इंटरसेक्शन पे हैं ट्रैफिक आपको वहाँ पे भी मिलेगा हैवी। एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन 4305 व्हिच इज 4305। अप नेक्स्ट कम्स इन शुक्रान अल्लाह। सोनू निगम की आवाज आपके साथ अंटिल 5 o'clock।
1: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month। Big 106.2।
4: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट of Bollywood।

टाइम टू रैप इट अप. नीति मोहन की आवाज सब तेरा सोच न सके. आपने सुना बिग 106.2 पे. आई विल नाउ सी यू टुमारो शार्प एट 2 o'clock टिल 5 o'clock. ऑफ कोर्स आवर कन्वर्सेशन, हमारी जो आफ्टरनून की बातें हैं वो इसी पेस इसी अंदाज में चलती रहेंगी. ऑफ कोर्स फॉलो करते रहिए बिग 106.2 को भी. वी आर ऑन 106.2 बिग एफएम एंड यू कैन ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड व्हाटएवर वी पोस्ट ऑन आवर सोशल्स. आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे है एंड द सोशल मीडिया क्वीन शी इज जस्ट कमिंग इन 5 minutes फ्रॉम नाउ. हर नेम इज मानसी. फ्रॉम 5 to 9 द शो is called The Big Thrill, and of course all the thrill and excitement of the evening banter happens with her. Stay locked on and keep listening to this best music in the country, in the UAE, on Big 106.2. We are the beat of Bollywood.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: This summer, upgrade your drive with Jetour. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE. Part of a group holding. T&Cs apply.
1: Early in the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color.
3: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
2: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 35 डिग्रीज आउटसाइड, फील्स लाइक 43, लो जाएगा अराउंड 32, वेरी ह्यूमिड दो, ह्यूमिडिटी है 65% पर।
1: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill. सबसे पहले काम की बात, अगर free family staycation पे जाना चाहते हैं, then very very simple, you'll have to register and उसके लिए WhatsApp करना है BSS your name to 0543091062. That's our WhatsApp number. Very very simple. अगर हमारे randomizer ने आज शाम आपको ढूंढ निकाला, then you'll be competing with someone here. आप दोनों खेलेंगे एक vacation word game. Whoever wins the game, A, आपका नाम shortlist हो जाएगा for this ultimate family staycation, and B, you're walking away with open movie tickets and F&B vouchers. But सबसे पहले आपको एक WhatsApp करना है BSS your full name to 0543091062. 5 से 6 we play this fun game. It's called the 5 second rule.
1: 5 second rule.
3: Oh yeah.
2: आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. रोज शाम बोलती हूँ साउंड्स वेरी वेरी इजी, वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम एंड यू विल से कि इतना आसान है नहीं. अगर आपने खेलना है तो कॉल करो 800-1062 पे. प्लस वी विल आल्सो टॉक अबाउट दिस अल्टीमेट रिसर्च दैट आई केम अक्रॉस दैट ओवर द टॉप इंसल्ट्स इन फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप इज इक्वल टू पीक अफेक्शन.

0: The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
4: Hey, jaldi hata tera khatana, chal hata.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: All right, traffic a bit patchy at the moment. Agar aap Sheikh Zayed pe hain, matlab bit is an understatement. 30 se 40 minute ka delay hai. Business Bay DIFC Dubai Mall again is packed. It's bumper to bumper situation there. There's also traffic near Dubai Design District. Slow moving traffic if you're on the Alcooz Industrial Area too. There's also traffic on the Hesse Street going towards JVC all the way towards Motor City. Anything else you'd like to report, let me know. 800-1062 par.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
7: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, मैं हूँ Mansi. We're playing the 5 second rule. फिलहाल फोन लाइंस पर निखिल. Hi, good evening.
2: Hi.
1: How are you, Nikhil?
2: ट्रैफिक में फंसे हुए हैं.
1: हाँ, मैंने सुना है कुछ मर्क्यूरी वर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया है. आई एम सराउंडेड विद अ लॉट ऑफ जेंजीज, तो मोस्ट ऑफ देम वर इन अ वेरी डिफरेंट मूड टुडे. तो मैंने बोला हुआ क्या है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो मेरे फीलिंग्स अलाइन नहीं हो रहे हैं. आर यू अ जेंजी और यू आर मिलेनियल? एक्सेंट बदल गया सीधा, मेरे को लगा पायलट ने कॉल किया.
2: नहीं,
1: तो आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ द टीम. वेरी वेरी नाइस. आई लव योर एयरलाइन.
2: या आई एम पार्ट ऑफ द ग्राउंड ऑपरेशन.
1: या आई लव योर एयरलाइंस बाय द वे. बड़ी अच्छी है फॉर अ बजट एयरलाइन. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं

0: 5 सेकंड मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
1: 5 सेकंड रूल.
2: ओह यस.
0: तीन खान्स ऑफ बॉलीवुड.
3: सलमान, शाहरुख, आमिर.
0: वेरी नाइस. 3 सेकंड के अंदर तीन ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एयरपोर्ट पे मिलती हैं या दिखती हैं.
3: बैगेज बेल्ट, चेक इन काउंटर्स एंड इमिग्रेशन काउंटर्स.
0: वेरी वेरी गुड. तीन ऐसी चीजें दैट आर व्हाइट इन कलर एंड आप इन्हें खा भी सकते हैं, सफेद रंग की होती हैं.
3: रसगुल्ला, संदेश,
0: संदेश,
3: पनीर.
0: माइंड ब्लोइंग आ निखिल, यू आर लिटरली फ्लाइंग, प्लेइंग रियली वेल. तीन ऐसी चीजें जो आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कभी नहीं बता सकते हैं या बताएंगे. यहाँ फंसे.
3: व्हाट आई डू विद माय बॉयफ्रेंड, व्हाट आई डू विद माय फ्रेंड्स, माय डार्केस्ट सीक्रेट अबाउट माय एक्स.
0: See, you guys also have secrets. क्योंकि लड़के कहते हैं अरे we don't have any secrets, we're like an open book. But whatever happens, whatever happens in the boys trip, I think it is as mysterious and as controversial as a girl's trip. Girl's trip में भी बहुत कारनामे होते हैं. All right, quickly tell me तीन गाने जिनमें दिल आता है.
3: दिल तो पागल है, दिल, दिल, हम दिल चुके सनम.
0: अरे अरे अरे अरे,
3: ये दिल,
0: टाइम खत्म हो गया, बट आप अच्छा खेल रहे हो आप अभी.
3: बट ये दिल दीवाना तो मैं बोल चुका था लास्ट में. नहीं, दीवाना नहीं था, दिल तो हो गया था.
0: अरे अरे, ये क्लास के उन बच्चों में से है कि मेरा 0.5 मार्क बट 99.5 क्यों आए. तीन इमरान हाशमी की मूवीज.
3: जन्नत, जन्नत 2 और
0: मर्डर, मर्डर, वो लम्हे वो बातें. अरे कैसे भूल सकते हो, 93 बॉर्न हो आप, आशिक बनाया आपने इन्हें, हम सबको बड़ा किया है. माइंड ब्लोइंग निखिल, कमाल खेला है. मोस्ट ऑफ योर आंसर्स वर बैंग ऑन विदिन 5 सेकंड. सो आई थिंक द किंग ऑफ 5 सेकंड रूल आज इज निखिल. निखिल कैसे लग रहा है आपको ये खिताब आपको दिया है मैंने, अच्छा लग रहा है?
3: बहुत
0: मजा आया निखिल आपसे बात करके. एंड हैव अ सेफ ड्राइव बैक होम. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
3: थैंक यू.
0: बाय. And gee, this is how you play the 5-second rule. Agar aapko gaadi mein baithe baithe lag raha hai that you can do better than Nikhil, which I highly doubt, give me a call on 800-1062.
1: Beat 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill, Mansi. We're playing the 5 second rule. Joining us is Amreen. Hi, Amreen.
2: Hi.
1: How are you?
2: I'm fine, thank you.
1: Kahan ja rahe ho? Kahan se aa rahe ho?
2: Actually, just finished my office work and just sitting inside the car.
1: Very nice. Kya karte ho aap?
2: I am owner of my own company.
1: Oh, boss
2: and
1: lady.
2: And just finished the just finished the work at 5 o'clock and now just relaxing in the car.
1: Jala rahe ho na hum sabko? Jo bas din
2: nahi nahi jala nahi rahe ho.
1: But very nice, huh? Means boss lady.
2: Yeah, it's actually very nice, yes. Anytime you can work and you can take a holiday whenever you want. You have to work also, but you can take a holiday whenever you want.
1: अपने काम में आप 8 घंटे जो है वो रील्स नहीं देख सकते हो क्योंकि उसमें काम करना पड़ेगा.
2: And you can earn a lot.
1: People who are passionate about working, वही अपना काम शुरू कर पाते हैं, वरना तो सारी जिंदगी पंच आउट में ही. मैं कह रही हूँ ना, वरना तो सारी जिंदगी पंच इन पंच आउट में ही निकल जाती है फिलहाल.
2: नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको सुना है, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी जोवियल.
1: सडनली मेरी
2: हमेशा सुनती हूँ. मैं हमेशा आपको सुनती हूँ.
1: कब मिलेगा मुझे अमरीन मेरी मेहनत का फल?
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह.
1: यू आर सो क्यूट. चलो, वी विल प्ले द 5 second रूल. इट्स अ फन गेम. आपको मिलते हैं 5 second. आई विल गिव यू फ्यू कैटेगरीज एंड आपने 3 चीजें बतानी है 5 second के अंदर. ओके,
2: यस,
1: ऑलराइट,
2: यस यस.
0: 5 second रूल.
3: ओह या.
1: 3 थिंग्स दैट आर ग्रीन इन कलर एंड आप खा सकते हैं.
2: ग्रीन पीस, ग्रीन फिंगर, करेला.
1: ओह नाइस. 3 बॉलीवुड मूवी टाइटल्स जिनमें हम आता है, हम से शुरू होता है.
2: हम आपके हैं कौन? हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम.
1: ओहो, ये तो 5 second रूल प्रो मैक्स वर्जन आ गया यहाँ पे मुझे लग रहा है. 3 ऐसी चीजें जो सिर्फ बीच पे मिलती हैं.
2: सैंड, वाटर,
1: ओके,
2: एंड वॉलीबॉल दैट नेट.
1: मैंने ही नजर लगा दी मुझे लग रहा है. मूविंग ऑन. 3 सनी देओल की मूवीज.
2: गदर, गदर 2 एंड हम हिंदुस्तानी.
1: 3 थिंग्स दैट विल फाइंड अंडर योर बेड.
2: अंडर माय बेड आई विल गेट अ पिलो, बेडशीट एंड
1: 3 ऐसी चीजें जिससे आपको गुस्सा आता है अपने एम्प्लॉइज पर.
2: If they are late, if they are lying and if unnecessary they are taking a holiday.
1: तो कैसे अप्रूव करते हैं, कैसे लगता है कि एम्प्लॉय रियली अमरीन से छुट्टी मांग रहा है? आप कैसे गेज करते हो ये?
2: उनके शक्ल पे प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मैं समझ जाती हूँ कि उन्हें छुट्टी चाहिए, उन्हें जाना है अपने कंट्री.
1: नहीं, किसी ने झूठ बोल दिया आपको और झूठ पकड़ा गया तो फिर क्या करते हो? फायर करते हो?
2: फायर करते हैं, फायर डांटते हैं उन्हें.
1: फायर नहीं करते,
2: डांटते तो है, डांटते है. वो आँख ही काफी है हमारी.
1: यार अमरीन, आप तो एक तरह से मम्मी हो जैसे हो कि आँख ही काफी है हमारी. बट आपने खेला अच्छा पहली बार के हिसाब से, हिट और मिस था. बट वाज लवली टॉकिंग टू यू अमरीन. हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: सेम ईयर थैंक यू
1: बाय. 5 second रूल आपने खेलना है. एक ही रूल है, कॉल करना 800-1062 पर.

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. And of course, your chance to win a family staycation. For that, register karna hai, WhatsApp karna hai, BSS apna naam 0543091062 par. Filhal ek research jo kehti hai ke अगर आप प्यार में या दोस्ती में अपने दोस्त की या अपनी पार्टनर की इंसल्ट नहीं करते हैं, टांग नहीं खींचते हैं, मतलब वो प्यार सच्चा है नहीं. Over the top insults are equal to peak affection, and I personally agree with this research. अगर मुझे आपसे मोहब्बत है तो हाँ, मैं आपकी थोड़ी बहुत प्यार में बेइज्जती करूँगी, मतलब वो प्यार वाली, एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी टांग खींचूंगी. बट डू यू अग्री विद दिस रिसर्च? अगर प्यार और दोस्ती सच्ची है तो थोड़ी बहुत टांग खिंचाई, थोड़ी बहुत ओवर द टॉप इंसल्ट चलती है. लेट मी नो ऑन 800-1062. वी आर आल्सो प्लेइंग द 5-second रूल. अगर आपने खेलना है, वही नंबर है, कॉल करो 800-1062 पर.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill, Mansi, and I came across this research that says that over-the-top insults are equal to peak affection, jiska ye matlab hai ki agar pyar mein, dosti mein, aap ek dusre ki thodi bahut beizzati na karein, ek dusre ko jo hai chidhaye na, chhede na, tab tak wo pyar, वो दोस्ती सच्ची नहीं है. I've got Niharika with me. Hi Niharika.
2: Hi, how are you?
1: I am good, how are you?
2: I'm good.
1: So Niharika, do you agree with this research? Because I totally do. If I love you even as a friend, then मैं करूंगी. आपका मजाक भी बनाऊंगी, आपकी बेइज्जती भी करूंगी.
2: That's true because I completely agree. See, I'm married and I have a 5-month-old daughter.
1: So
2: आजकल मेरे साथ तो डेली होता है, जैसे ही घर पे जाओ और मेरे हस्बैंड होते हैं और वो हमेशा मेरे को यही बोलते हैं, सी शी इज विद मी पूरा दिन, तो अभी क्या है वो मेरे से ज्यादा प्यार करती है. तो इट इज, ये हमारे लिए आजकल डेली का टॉपिक हो गया है.
1: रियल रिलेशनशिप में जब तक यू नॉट रोस्टिंग योर पार्टनर अकॉर्डिंग टू मी एंड दिस रिसर्च, इट्स नॉट अ रियल वन. But was your relationship like this from day one? Like you bonded over roasting each other? That's when you realized, ke, yeah, he's the one?
2: Yes, definitely. It was like that. You know, every moment I feel like that, everything he will come and roast. Oh, yeah, aisa hai. Like that.
1: I think ये एक love language है जो बहुत कम लोग समझते हैं, but I think बहुत सारे लोगों की love language roast करना भी होती है.
2: True.
1: बट रोस्ट हमेशा ऐसी चीज पर होना चाहिए जो एकदम फालतू और फनी हो.
2: नॉट
1: ऑन अ सीरियस नोट, यू कांट मेक समवन फील इनसिक्योर. सो या, आई थिंक दिस इज द अमिट गोल्डन रूल ऑफ रिलेशनशिप. थैंक यू सो मच निहारिका, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: थैंक यू,
1: बाय-बाय. सो डू यू अग्री विद दिस रिसर्च दैट रोस्टिंग इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ अफेक्शन? मतलब अगर आपने एक दूसरे को प्यार में छेड़ा नहीं, चिढ़ाया नहीं, तो वो प्यार ही क्या है? 800-1062 is the number to dial. Big 106.2.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Score!
2: 25 million dirhams with big tickets.
1: 5-1 million dirham prizes.
2: Plus weekly cash draws.
1: Don't miss your shot.
2: Buy now at bigticket.ie.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: You know what? Salary day obviously acha din hota hai. Lekin kaafi hectic bhi. Cash nikalo, bills aur expenses ke liye paise alag rakho. Phir baaki paise ghar bhejne ke liye exchange center ke chakkar lagao.
5: Sab kuch itne mushkil tarike se kyun kar rahe ho? E&Money Money use करो
4: क्या सैलरी के लिए
5: हाँ अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ
4: जैसे क्या
5: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स बिल पेमेंट्स फ्री कार्ड सब कुछ एक ही ऐप से
4: वाह ये तो काफी यूजफुल लग रहा है
5: बिल्कुल E&Money Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है तो E&Money Money के साथ फिक्र छोड़ो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
0: द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM टू 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae
6: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: Missed your morning buzz?
7: Utha le re deva, utha le re baba.
0: Yes or no?
8: There is somebody who's celebrating Etihad Rail. It is Iftikhar. Bhai, matlab jaldi lao. कितने टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं एहतियात रेल का बताइए
9: बहुत टाइम से रियल में मेरा असल में ना देखिए मैं बहुत ट्रैवलर हूँ मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और सबसे मेरा जो पसंदीदा मोड ऑफ ट्रैवल है वो ट्रेन है
8: आई कांट एग्री विद यू मोर यार मतलब किसी कंट्री में जाने का उस कंट्री का जो एक एसेंस है ना उसको उसका अगर आपको मजा लेना है तो ट्रेन में डेफिनेटली ट्रैवल करना है करेक्ट
9: एग्जैक्टली और दूसरा असल में ना बचपन की बड़ी यादें हैं ट्रेन के साथ हमारे यहाँ वो पुराने दौर में इंजन चलता था जो कोयले से चलता था
8: लिटरल छुक छुक गाड़ी
9: और हमारे उधर क्या है ना छोटे छोटे गांव आते हैं तो लोग रास्ते में मतलब जो भी है ना उस गांव का या उस एरिया का वो फ्रूट लेके आ जाते थे फ्रेश फ्रूट हाँ ये है कि वो बहुत सस्ते होते हैं यानी मार्केट के हिसाब से भी वो आपको वैसे ही दे देते हैं इतने सस्ते दाम
8: बिल्कुल कर दी ना देसियों वाली बात मुझे पता था एंड में ये
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
12: It is 35 degrees, low jayega around 32, but feels like 43 क्योंकि काफी humidity है 69% पर.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: सॉलिड कलेश हुआ है विद डॉन 3. जब अनाउंसमेंट हुई थी कि शाहरुख नहीं रणवीर होगा तो पब्लिक ने जो है कलेश कर दिया कि नहीं, वी कैन नॉट इमेजिन डॉन 3 विदाउट किंग खान शाहरुख खान. उसके बाद रणवीर को ऑफिशियली, बिकॉज ही सेड ही वोंट बी डूइंग द मूवी एनी मोर, फरहान अख्तर एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट ने जो है बैन कर दिया, लीगल नोटिस भेज दिया. बहुत कलेश चला. इनफैक्ट आई हर्ड स्टोरीज के टॉप बॉलीवुड प्लेयर्स लाइक मिस्टर आमिर खान, सलमान, आलिया, करण जौहर, दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ मैसिव बिहाइंड द सीन्स मीडिएशन मीटिंग्स एंड दे ट्राई टू स्मूद ओवर द रिफ्ट बिटवीन रणवीर एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट. बट अब ऑफिशियली फॉर्मली बैन रिवोक हो गया है क्योंकि रणवीर ने लीगल नोटिस जो है वो एक्सेल एंटरटेनमेंट को भेजा था एंड ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट करी थी सिंटा से एंड इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन से, एंड ऑफिशियली जो है वो विड्रॉ कर ली है एप्लीकेशन एंड रिवोक कर दिया है नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव. अब रणवीर आगे क्या करने वाले हैं बिकॉज ऑफ द हैवी डॉन 3 फॉलआउट, इफ यू आर वरिंग कि वो क्या करेंगे, ही इज मूविंग पास द कंट्रोवर्सी. रणवीर इज लॉग्ड इन टू स्टार्ट शूटिंग अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ज़ॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर, इट्स कॉल्ड प्रलय, जिसे जय मेहता डायरेक्ट करने वाले हैं एंड द मूवी इज ऑल सेट टू स्टार्ट. शूटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में दिस सितंबर. बट आई हैव टू से डॉन 3 अब जो भी करेगा उसके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जिस दिन से ये मूवी अनाउंस हुई है उसी दिन से कलेश ही कलेश हो रहा है. फिलहाल व्हेन आई कम बैक आपकी जिंदगी में कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा, दैट इज एक फैमिली स्टेकेशन सो दैट यू बीट दिस हीट इन स्टाइल. उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप करना जरूरी है, वेरी वेरी सिंपल, BSS दैट इज बिग समर सरप्राइज 0543091062 पर.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae.

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, keeping you company until 9. I'm Mansi. While enjoying the music, if you're ready for a serious SUV upgrade, then check out the latest deals from Jator. Drive home a brand new Jator with 0 watt or 0 interest on select models and a 1 million kilometer warranty. Best part ye hai, you can buy now, pay next year. Your dream SUV could be yours with EMIs starting from just 966 dirhams a month. Head to Jator showrooms in Abu Dhabi, in Dubai, Ajman, ya phir Alain, and take it for a spin today. Jator UAE, part of the Elite Group Holding. TNCs do apply. In fact, abhi abhi Instagram se mujhe pata chala hai ki ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है. इफ यू इन टू क्रिंज मूवीज देन ये आपकी भी फेवरेट होगी. इस मूवी की एनिवर्सरी अभी गई है इस वीकेंड पे, एंड आई डिडंट इवन रियलाइज ये मतलब सेलिब्रेशन बनता है. दो प्रेम, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, राष्ट्रीय की मूवी, तोता बोल रहा है, कुत्ता बोल रहा है, ड्रामा हो रहा है. मतलब एक एक सीन में इतना ड्रामा है कि क्या एकता कपूर के शो में होगा. गाने आई हैव टू से कमाल, एंड सो वॉज द स्टार कास्ट. लॉट ऑफ पीपल Still love re-watching this movie. I remember जब ये movie आई थी, मैं सबसे आगे जाके खड़ी हो गई थी. वो single screen होते हैं ना, जब पीछे से धक्का लगता है, जैसे ही गेट खुलता है, जो धक्का लगा मैं नीचे गिर गई थी. But movie मुझे बड़ी अच्छी लगती है. करीना, रितिक एंड अभिषेक बच्चन. Let me see कितने लोग हैं मेरी तरह जो ऐसी cringe movies enjoy करते हैं. Movie याद आ गई है तो 800-1062 is the number to dial.
0: Big 106.2.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: You know, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना भूल जाऊं, मैं ये मूवी 100% सेलिब्रेट करना चाहती थी, आई जस्ट डिडंट रिमेम्बर. एंड अभी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि वीकेंड पे इस मूवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है, तो आई थॉट लेट मी सी कितने लोग हैं जो मेरी तरह इस मूवी से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल से क्रिंज है, बट आई लव क्रिंज. एंड आई फाउंड माय क्रिंज पार्टनर पूजा. पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आई लव दिस मूवी.
3: आई नो This Instagram reel has taken away my life. You know?
2: But Pooja, बता है, ये reel इतनी viral है, ये meme in fact, के non-desis को भी पता है. Pooja, what is this behavior?
3: Yes. चलो, वैसे भी बहुत common नाम था, but और popular हो गया.
2: But Pooja, ये क्या है? मतलब ये कैसा behavior है? You also love cringe as much as I do. देखने गई थी तो वो सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स तब था नहीं, स्पेशली इन माय सिटी, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो सबसे आगे जाके मैं खड़ी हो गई थी. यू नो, जैसे बच्चे नहीं खड़े हो जाते हैं कि हम फर्स्ट एंट्री लेंगे, जैसे ही गेट खुला पीछे से धक्के लगे, मैं गिर गई. इट वॉज सो केओटिक एंड बट आई लव द मूवी. मैंने कसेट खरीदा था, दिन भर मैं इस मूवी के गाने सुनती थी. आपने किया वो गिटार पकड़ के कसम की कसम है कसम से?
3: ओवर एक्टिंग करीना कपूर की बहुत ज्यादा थी.
2: रितिक की भी कम नहीं थी. आंटी जी, मेथी का परांठा, आई लव दिस मूवी. मुझे रटी हुई है.
3: मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि ये सेम मूवी है जो मैं सोच रही हूँ.
2: मैं प्रेम की दीवानी हूँ.
3: करेक्ट, मैं प्रेम की दीवानी हूँ. अभिषेक बच्चन भी था इसमें.
2: हाँ, आई थिंक ही वाज द ओनली गुड पार्ट अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स. But your favorite गाना from the movie? और कहाँ देखी थी ये movie आपने?
3: यार unfortunately मैंने घर में ही देखी थी. I saw it long after its release. Not like the first day, first show.
2: मैंने तो पहले हफ्ते देखी थी. मैं बहुत बड़ी फैन हूँ यार इस मूवी की. आई थिंक राष्ट्रीय जिन्होंने मूवी बनाई है उसके बाद सबसे बड़ी फैन इस मूवी की मैं हूँ. आई लव दिस मूवी. योर फेवरेट गाना फ्रॉम द मूवी दो.
3: The same that you said, कसम की कसम.
2: गाने बड़े अच्छे थे इस मूवी के. वो भी दिल ने बहुत रुका. I love this movie. I mean, I can keep talking about the movie the entire day.
3: I know.
2: Thank you so much, Pooja. You have a great evening.
3: You too. Bye. It's always a pleasure to talk to you.
2: Same here, love. Bye.
3: Bye. See you.
2: राइट, तो हमने इतनी बातें कर ली हैं. एंड फॉर ऑल दोज राइट नाउ हु लव दिस मूवी एज मच एज आई डू एंड इतनी ही पैशनेटली आप इस मूवी के बारे में बात करते हैं, आई एम गोना प्ले यू दिस वन राइट ऑन बिग 106.2 सेलिब्रेटिंग मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जो 2003 में ऑन दिस वीकेंड 27 जून को रिलीज हुई थी. बट हमने मिस कर दिया बर्थडे एंड सडनली इट्स ऑल ओवर इंस्टाग्राम, सो आई थॉट आई विल प्ले

0: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE, part of Elite Group Holding. TNCs apply.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अल ऐन में।
1: चलो चले अलराज।
4: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
4: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
0: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
4: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
6: Ladies and gentlemen, a 47-minute delay on Sheikh Zayed. Still काफी slow moving traffic and there's also traffic Warka to Merdif आगे मोहित नाथक शेख मोहम्मद बिन जायद आराम से a 35 to 40 minute delay Rashidiya Nadal Hamad Dubai Festival City Creek Harbour Jeddah पैची ट्रैफिक सभी एरियाज में. इसके अलावा आपको ट्रैफिक मिलने वाला है अगर आप हेसर स्ट्रीट पे हैं, स्पेशली फिर गोइंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी एंड ऑल द वे टुवर्ड्स मोटर सिटी. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
4: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is The Big Thrill and it's time for you to win that ultimate family staycation. Beat the heat and style. It's time for the big summer surprises. Agar aap bhi shortlist hona chahte hain, then BSS apna naam WhatsApp karna hai 0543091062 pe, just like Nitya and Vedansh. Good evening.
2: Good evening, Mansi.
1: Good evening, Nitya. Meet Vedansh. Vedansh, Nitya, aap dono ek dusre se compete karenge.
3: Sure, Mansi.
1: Nitya sounds very confident. Vedansh, करते क्या हैं आप?
3: I am
1: सोचना पड़ रहा है, जो मन कर रहा है वो बन जाओ. ऐसे ना, जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ मैं भी कुछ भी बन जाती हूँ. आप क्या बनना चाहते हो आज शाम?
3: I am a student. Yeah.
1: ठीक है, जितना सोचा ना तो मुझे समझ नहीं आया. एंड व्हाट अबाउट यू नित्या?
3: I'm a corporate lawyer.
1: Oh my god. Yeah, very very tough competition, Vedansh. Very
3: yeah,
1: tough.
3: Yeah. Really very tough.
1: You know, I'll give you a word here. It will have missing letters. You have to fill in the letters and guess the word. That's it. It's called the vacation word game.
3: Sure.
1: So when was the last time, Nitya, aap staycation pe gaye the?
3: It's been a while actually. I think it's been
1: must
3: more
1: be very busy corporate lawyer.
3: Yes.
1: वेदांश तो बोलेगा जब मम्मी पापा ले जाते हैं मैं चला जाता हूँ, इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें ले जाऊँ. राइट,
3: करेक्ट
1: है ना? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. आंसर देने के लिए पहले आप बोलेंगे बिग नित्या, बिग वेदांश. यू हैव टू फॉलो दिस रूल, अदरवाइज यू विल बी डिसक्वालिफाइड इवन इफ यू आंसर करेक्टली. ठीक है?
3: ऑल
1: द वेरी बेस्ट.
0: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
1: Okay, the first word is C-M-A. C-M-A. पहले लोग लेकर जाते थे ये छुट्टियों में, आजकल तो फोन से ही काम चला लेते हैं, तो होता है फोन में भी होता है.
3: बिग वेदांश.
1: यस वेदांश.
3: कैमरा.
1: बिल्कुल सही जवाब, एक पॉइंट वेदांश.
3: थैंक यू.
1: ऑलराइट, द वर्ड नंबर टू इज PAS-PO-. बिल्कुल सही जवाब, वन ऑल हो गया है. घमासान मुकाबला, वन ऑल. ऑलराइट, द नेक्स्ट वर्ड इज BO-LE.
3: बॉटल.
1: इट इज. एंड इसी के साथ congratulations, Nitya. You've been shortlisted for the big summer surprise staycation. Plus, Asham, you're walking away with couple movie tickets courtesy of Vox Cinemas and F&B vouchers.
3: Yeah, thank you.
1: You're most welcome. Vedansh, you tried really, really well. You still have time. Mummy Papa ko staycation lekar jayega hamara Raj Dulara. Message karte rehna, theek hai? Theek hai? Congratulations, Nitya.
3: Thank you.
1: Bye, bye, guys.
3: Bye.
0: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.

0: You know, this song feels like a vacation. Ultimate summer vacation. In fact, yahan par every single evening I give you a chance to win yourself the ultimate staycation.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: With the big summer surprises, your chance to beat the heat in style. Family staycation, aap jeet sakte hain. Stunning property hai, Rixos Almarid in Russell Khema. And बहुत सिंपल है, आपने अभी भी नित्या को सुना, वो शॉर्टलिस्ट हुई. अगर आप भी होना चाहते हैं देन एक मैसेज करना जरूरी है, इनफैक्ट व्हाट्सएप करना जरूरी है. BSSB फॉर बिग समर सरप्राइजेस. अपना नाम 0543091062 पे भेजना है. अगर आप होते हैं यहाँ पे सिलेक्ट तो आपको मिलेगा मौका वेकेशन वर्ड गेम खेलने का. एंड इफ यू मैनेज टू क्रैक इट, यू वॉकिंग अवे विद कपल मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, प्लस आपका नाम ड्रॉ में जाएगा. बिग समर सरप्राइजेस हैज बीन मेड पॉसिबल बाय अवर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर स्केचर्स, टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रिक्सॉस अलमारी, रसल खेमा. डू नॉट फॉरगेट, कल भी वंस अगेन आई विल बी प्लेइंग दिस गेम एट द सेम टाइम वेयर इन यू कैन गेट अ चांस शॉर्टलिस्ट होने का इन द लकी ड्रॉ. सो मेक श्योर यू कीप सेंडिंग अस दोज व्हाट्सएप्स. हमारा नंबर है 0543091062. Back to back Kriti Sanon ki vibe. After cocktail 2, it's time for crew.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

मिला नहीं, मिला नहीं। और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली। आई कांट

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 33, low jayega around 32 and bahut humidity hai. Filhal it's on 63%.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2.
0: The Beat the UAE of Bollywood.
2: What's your way of unwinding and unplugging after a long day? Do you also keep doom scrolling? I think we need to get back to our roots, to our childhood. Hum सारी दोपहर गर्मी की छुट्टियों में बोर्ड गेम्स खेला करते थे, राइट? एंड आई थिंक वी नीड टू जस्ट टच बैक आवर रूट्स एंड एंजॉय दैट टाइम विदाउट एनी टेक्नोलॉजी अराउंड. एंड इफ यू लव डूइंग दैट, देन अनप्लग, प्ले एंड कनेक्ट एट अनवाइंड कैफे. यूएई का फर्स्ट बोर्ड गेम कैफे है विद 1,000+ गेम्स ऑल अंडर वन रूफ. एंड द फूड देयर इज अमेजिंग, फ्रॉम पिज्जास टू बर्गर्स टू माई फेवरेट कॉफी देयर. अनवाइंड कैफे इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर फैमिली टाइम, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स, डिजिटल डिटॉक्स जो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी हम फोन पे ही लगे रहते हैं. बर्थडे पार्टीज के लिए, गेट टुगेदर्स के लिए बहुत ही कमाल जगह है. एंड आई लव दिस कॉन्सेप्ट, गुड फूड एंड ग्रेट बोर्ड गेम्स. ट्राई अनवाइंड्स गेम मास्टर्स एंड इट विल हेल्प यू पिक अ गेम एंड यू विल गेट प्लेइंग इन मिनट्स विद एपिक मर्डर मिस्ट्री डिनर्स, ट्रेडिंग कार्ड टूर्नामेंट्स एंड पार्टी पैकेजेस. देयर इज ऑलवेज समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग हैपनिंग एट अनवाइंड कैफे. सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए unwinddubai.com. फिलहाल विजिट करते हैं सिंपलर टाइम्स. वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड गेम्स, अ चाइल्डहुड. आई रिमेंबर ऑल माई कजन्स हमारे घर आया करते थे गर्मियों में, एंड आई एम द वर्स्ट डांसर. एंड मेरी सारी कजन्स बहुत अच्छा डांस करती हैं, एंड उनके साथ मैं भी इस गाने पे डांस करती थी. एंड यू नो, एज अ किड आप में कोई इनहिबिशंस नहीं होते हैं. मुझे तब लगता था हाँ मैं ही सुष्मिता सेन हूँ. वैसे मुझे

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अब हम भी बेफिक्रे उड़ सकते हैं। पेट्रोल के प्राइसेस कल से कम होने वाले हैं। आज पहली बार जब से मैंने लाइसेंस लिया है तब से मैं देखूंगी कि 12 बजे से पहले लोग लाइन लगा के नहीं खड़े होंगे पेट्रोल स्टेशन के बाहर, क्योंकि कल से पेट्रोल सस्ता होने वाला है। काफी प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं, सुकून की सांस ले सकते हैं। सुपर 98 जो जून में 3.95 पर लीटर था अब होगा 3.40। स्पेशल 95 जो जून में 3.83 था अब है 3.29। ई प्लस 91 जो 3.76 था अब है 3.21। एंड डीजल जो 4.33 था इज नाउ 3.60। सो या ग्रेट न्यूज कमिंग इन, बिग रिलीफ। अब जब मैं जाऊंगी पेट्रोल स्टेशन अगले महीने और बोलूंगी कि प्लीज 50 ड्रम्स का भर दीजिए, तो वो मुझे ये नहीं बोलेंगे कि क्यों आप बार बार आना चाहती हैं, एटलीस्ट 100 का तो भराओ। अब काफी टंकी फुल हो जाएगी मेरी 50 दिरहम में भी। सो ग्रेट न्यूज, आई थिंक जुलाई इज गोना बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मंथ फॉर ऑल ऑफ अस।

0: लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

इवनिंग, दिस इज द बिग थ्रिल मानसी. एंड यू नो आजकल मेरे दिन का सबसे एक्साइटिंग थ्रिलिंग पार्ट होता है घर जाके लॉकअप देखना. इफ यू आर इनटू रियलिटी टीवी, आई एम श्योर यू ऑलरेडी वॉचिंग इट. इफ नॉट प्लीज डू. मतलब कमाल कंटेस्टेंट्स हैं. इफ यू सीन देसी ब्लिंक, पमला इज देयर एंड साथ में गोविंदाज वाइफ. ओ माई गॉड, आई लव हर, शी इज सो अनफिल्टर्ड. एंड सुनीता और पमला की इतनी पट रही है फिलहाल, आगे जाके लड़ाई भी होगी. तो अगर आपको भी ऐसे कलेशी ड्रामे अच्छे लगते हैं, स्पेशली रियलिटी टीवी शोज, कॉन्ट्रोवर्शियल शोज, प्लीज वॉच इट. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट शो टू वॉच विद योर डिनर और प्रॉब्ली आफ्टर अ लॉन्ग डे. एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यू विल टोटली लव इट. बिग 106.2.

0: सिंह के खजाने काट रहे, जरा जोर से बोले बे।
1: गेट रेडी फॉर अ ट्रेजर हंट लाइक नो अदर। इंदिरा कुमार, भूषण कुमार एंड अशोक ठाकेरिया इनवाइट यू टू द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर ऑफ द ईयर, धमाल 4, स्टारिंग अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी एंड जावेद जाफरी। डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार, रिलीजिंग ऑन 10th जुलाई। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल निसर सिनेमा फिल्म। पावर्ड बाय बिग 106.2।
2: Craving pizza? Here's something even better. Order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Hello boys.
5: मेरे साथ prom जाने के लिए तुम सबको तीन departments में brilliant होना चाहिए. And that is good looks and good looks.
3: नाम है Mansi on the Big Thrill only on Big 106.2.

बजाए प्यार की शबनम मेरे गुलिस्तां में, बरसते रहते हैं हर सिमत मौत के साए, स्याहियों से उलझ पड़ती हैं मेरी आंखें, कोई नहीं है, कोई भी नहीं जो बतलाए मैं कितनी देर उजालों की राह देखूंगा, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना पास ना दूर, एक याद है दिल की धड़कन अपनी चाहत का जो ऐलान किए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, खून के घूंट पिए जाती है, ख्वाब कांटों से